नेशन के फन स्टेशन फनेशिया रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनेशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरेवन। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनेशियास नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 7:05 और अभी कुछ पार्टी सॉन्ग्स का सेगमेंट शुरू कर रही हूं अगले 30 मिनट्स तक। तो चलिए विद दैट आपको लेकर चली हूँ इस धमाकेदार गाने की तरफ।

ओ रोमियो से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना पान की दुकान। ऐसे ही तड़कते भड़कते गाने चलते रहेंगे यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी से सुने थे दोस्तों आप ये गाना लाल पीली अखिया। तड़कते भड़कते गाने चलते रहेंगे ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ। अगले गाने पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ दैट हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर जस्ट नॉट अ पेशेंट यू आर फैमिली। फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज देयर। दिस इज नॉट ऑल एंड पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग। दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियंस एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर सेंड योर रेज्यूमेस टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और यू कैन टेक्स्ट them. The number to text is 217-454-46 for more information. For more details, you can visit passionhealthphysicians.com or you can call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care, your health is our passion.

0: सत्य ने इस घर को संभाला था, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी इस घर में।
1: मुझे नहीं लगता मैं सत्या की जगह ले पाऊंगी।
0: आपके पति कई दिनों से रात भर घर नहीं लौट रहे, संभालिए उन्हें।
1: कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। मेरा और देव
0: अगले हफ्ते हम उस छोड़ के जा रहे हैं।

0: कब से?
1: जब से बाहर बेगम के यहाँ गाना सीखने जा रही है।
0: नाम क्या उसका?
1: सफर।

0: the song.
1: Beautiful gana taken from the movie Kalank. इसी के साथ दोस्तों अभी लेकर आई हूँ आपके लिए एक अमेजिंग सा चटकारे देने वाला गिव अवे। दोस्तों हियर इज योर चांस टू विन अ दाल मखनी स्लैश ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। जी हाँ दोस्तों, इस बात का गौर कीजिएगा कि ये गिव अवे सिर्फ डाइन इन के लिए ही वैलिड है। अगर आपको टेकआउट के लिए ये दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी चाहिए होगा तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस रेस्टोरेंट जाते हैं डाइन इन के लिए तो आप ये ढाबा स्टाइल चिकन करी एंड या फिर दाल मखनी किसी इसमें से कोई भी एक अवेल कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द लिसनर्स प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द लास्ट वन मंथ। सो यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर। अभी ये गिव अवे जीतने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बस मेरे एक सिंपल से सवाल का बहुत ही अच्छा सा जवाब देना है। ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ आपको मुझे बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देती हूँ। अगला गाना तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अगला गाना प्ले करने वाली हूँ कॉकटेल 2 मूवी से। तो कॉकटेल 2 मूवी में से जो तीन एक्ट्रेस और एक्ट्रेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी इनकी स्टारकास्ट है, आपको मुझे बताना है कि उनके कैरेक्टर्स का नाम क्या है। जी हाँ, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के कॉकटेल 2 के मूवी में के कैरेक्टर्स के नाम आपको मुझे बताने हैं। और अगर सही जवाब आपने मुझे दिया तो फिर आप जीत सकते हैं दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट। एंड वंस अगेन दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। आपको मुझे बताना है कॉकटेल 2 मूवी में जो शाहिद कपूर, कृति सेनन एंड रश्मिका मंदाना ने जो किरदार निभाए हैं उनके किरदारों का नाम क्या है। स्टूडियो का नंबर 9722355555। सही जवाब देने वाले को मिल सकता है ढाबा स्टाइल चिकन करी या फिर दाल मखनी फ्रॉम फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट।

ब्यूटिफुल माशु का सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। और सवाल मैंने आपसे ये किया था कि आपको मुझे कॉकटेल 2 में जो हमारी तीन एक्टर्स है शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के नाम बताने थे, तो उनके कैरेक्टर्स के नाम है कुणाल, एली एंड दिया। और सही जवाब मुझे दिया है सोनल जी ने। सो सोनल जीत चुकी है फ्लेवर लाउंज की तरफ से ये गिव अवे। अमेजिंग सोनल। जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ।

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium. We have got electrifying matches on Thursday, June 18th, Saturday, June 20th, Sunday, June 21st. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
4: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
5: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
5: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
5: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

0: सुपर हिट्स इज कमिंग योर वे
1: विशाल एंड शेखर
2: हियर वी गो
0: दैट्स राइट विशाल एंड शेखर लाइव गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग फिल्ड विद सॉन्ग्स यू डांस टू सेलिब्रेटेड विद एंड फॉलन इन लव लिसनिंग टू संडे जुलाई 12th एट द करिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड टिकट्स ऑन सेल नाउ कैश पटेल प्रोडक्शंस.com द सुपर हिट टूर विद विशाल एंड शेखर

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा, तो चलिए लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ले चलती हूँ आपको अगले गाने की तरफ।

चेन्नई एक्सप्रेस से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पे पिक्चराइज थी ये मूवी। ऐसे ही कमाल के गाने गए चलते रहेंगे यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फनिशा रेडियो पर 365 days ईयर हम आपके लिए लेकर आते हैं अमेजिंग से गाने, कुछ हमारे कुछ आपके पसंद के। इसी के साथ जी चलती हूँ आपको अगले गाने की तरफ।

0: ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 47 मिनट्स पास्ट 7। इसी के साथ यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे ज्यादा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। मेरे बाद आने वाले हैं प्रेम, तो आप उनको भी सुनिए, उनका भी हौसला बढ़ाइए। टिल देन मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आर्जे अपूर्वा, दीजिए मुझे इजाजत, मिलूंगी आपको अगले संडे। विद दैट, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड डॉलर्स। बाय बाय।
1: गंदे सॉन्ग
2: यार, पागल है यार।
1: क्यों?
2: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
1: बट व्हाई, इट्स आइकॉनिक।
2: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई।
1: बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी।
2: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: I guess. We killed it.
1: आगे ले गया ट्रोल हो जाएंगे.
2: Yeah.
1: Not at all.
0: दीनू डाल दे ट्रोल हुए तो हो जाएगी.
3: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

0: शुभ दिन आ पहुंचा है। एक ऐसा अवसर जहां 60 वर्षों की परंपरा, बेमिसाल कारीगरी और पीढ़ियों के विश्वास का संगम आ रहा है आपके शहर फ्रिस्को में। PMJ Jewels.
1: Be a part of this grand opening celebration from 20th June Saturday onwards and get exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. PMJ Jewels. Tradition crafted, style defined.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu. New options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.
8: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

sure you're hydrated, your kids are getting hydrated, your pets, if you have pets, please make sure they're hydrated as well. और यार हमारे birds के लिए कुछ करो यार, मैं कितने सारे घर देखता हूँ जहाँ पे you know you don't have water for the birds, please do that, it just takes like 5 seconds and उनके लिए it's like live or die situation, so please make sure you do that effort for our lovely birds outside. Ladies and gentlemen, welcome, this is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you have an amazing time. आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, grocery shopping कर रहे हैं, restaurant की तरफ जा रहे हैं या get together के लिए जा रहे हैं, और if you're just done with the day and heading back towards home, you're listening to us, you're listening to Funasia. That's all that matters to us. So thank you for tuning in. Let us know your jam and we will play them live on the air. 972-235-5555 is the studio ka number. पहला घंटा, पहला आवर आपको सभी को पता है, मेरे लॉयल लिसनर्स को तो पता ही है कि हम हमारे पॉप सेगमेंट बजाते हैं. सो सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम्स, नॉट फ्रॉम द मूवी, सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम्स. सो इट कैन बी लकी अली, शान, हुएवर यू वांट, राइट. सोनू निगम का पहला करियर 5-6 साल का तो वही था वेर ही वॉज अ पॉप स्टार बिफोर बिकमिंग द मैग्नानिमस हिंदी सिंगर एंड ऑफकोर्स अदर लैंग्वेजेस एज वेल. सो पहला गाना हमें संजय जी ने रेकमेंड पहले ही कर दिया, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आ गया, प्रेम भाई 8 बजे मेरा ही गाना पहला बजना चाहिए. तो सो संजय, हियर्स योर सॉन्ग ओ सनम फ्रॉम लकी अली.

खबर। ये एल्बम का जलवा ही ऐसा है लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी हमने बजाया दीवाना एल्बम से इस कदर प्यार है, जो हमें मोनिका ने रेकमेंड किया। इसके बाद हमें फोन आया राधा का, हु ऑलवेज रेकमेंड्स अस अमेजिंग सॉन्ग्स। उन्होंने बोला एक और गाना है इस एल्बम का जो आपको बजाना ही चाहिए, दैट इज दीवाना तेरा। एंड आई कैन नॉट यू नो डिसएग्री विद दैट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एवर इन द पॉप सेगमेंट। तो हम बजाएंगे अभी राधा का गाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू गाइज हैव सच अमेजिंग सॉन्ग्स, लेट अस नो यार। DMs आर ऑल्सो ओपन ऑन आर इंस्टाग्राम, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट। यू कैन जस्ट सेंड अस अ मैसेज इफ यू वॉन्ट गिव अ शाउट आउट टू सम ऑफ योर लव वंस, यू कैन डू दैट एज वेल, एंड वी विल गिव यू शाउट आउट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया। दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद RJ प्रेम। Here we go.

What an amazing song, iconic song, and an evergreen song. Sonu Nigam's Deewana Tera from the album Deewana. By the way, Sajid Wajid ne music diya tha. I had no idea about this. I just read and I thought that I should share that information. All right, Safi ne hume call karke bola hai. Sir ji, aapko aur aap sabhi listeners ko, I want to wish a very happy Father's Day. So thank you so much, Safi. And Safi is also wishing his dad, his father, a very happy Father's Day. So happy Father's Day to everybody. This is an amazing. I genuinely feel that our fathers are the lone warriors, the silent warriors. They never ask for anything. They never wish for anything. They just, you know, expect everything good for us and not for themselves. So to all the fathers who are working, grinding, we know and we see you and we thank you. All right. राहुल ने अभी मुझे रेकमेंड किया. अभी राहुल का मुझे फोन आया, एक सेकंड में मेरे को पता चल गया ये बॉम्बे वाला बंदा है और हम मुंबई वाले का यही है. एक सेकंड में हमारा इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है. तो मुझे राहुल ने बोला, सर जी जो आपने गाना बजाया वो मैं रेकमेंड करने वाला था, बट उसके बाद ओ मेरी मुन्नी करके गाना है. एंड आई एम लाइक, ओ माई गॉड, दिस वॉज एन अमेजिंग सॉन्ग. एंड इफ यू हैवंट हर्ड, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, ओ मेरी मुन्नी. It's an amazing song. Have a listen, ladies and gentlemen. और राहुल की तरह आपके पास भी गाने हो तो let us know your jam. 972-235-5555 is the studio का number and DMs are open on Instagram as well. Prem Joshi Podcast. P-R-E-M-J-O-S-H-I Podcast.

क्या खतरनाक गाना रेकमेंड किया यार, आज डैलस वासियों पे मेरा दिल आ गया यार। मैंने लोगों को क्या थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज रेकमेंड मी सम अमेजिंग पॉप सॉन्ग्स, लोगों ने क्या दिल पे ले लिया। बैक टू बैक फोन आ रहे, बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गिव अस लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आई नो संडे इवनिंग, संडे रात तक तो एकदम मूड ऑफ हो जाता है लोगों का, क्योंकि मंडे का एकदम वो खतरनाक वाला फीवर चालू हो जाता है। सो अपने शो का यही मोटो है कि आपको पॉजिटिविटी दे दे, आपको थोड़ा सा हंसी दे दे, मुस्कुराए, दैट्स इट, दैट्स द मोरो ऑफ आर शो। थैंक यू सो मच, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम। नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है ऐश ने, ऐश्वर्य ने, हु हेल्स फ्रॉम द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ कानपुर। हमने फटाफट एक दूसरे से बात की और वी बोथ आर सर्चिंग फॉर दैट अमेजिंग आलू चाट। हमारी सर्च जारी है और अगर किसी ने अभी तक खाया है वो अमेजिंग वाला आलू चाट, लेट अस नो यार, प्लीज़।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Aaja meri gaadi mein baith ja.
4: Baith jaao? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
5: Wo thoda overheating tha.
4: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो।
6: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
13: Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family, and loved ones. To all the fathers out there in the world, a very happy, happy Father's Day. You deserve all the happiness, all the love that you get and that you're not getting sometimes. Okay, so we are here to remind you that you're doing amazing. Thank you for taking care of yourself. Thank you for taking care of your family. Thank you for taking care of the community. And we hear you, we listen you, and we see you. Thank you so much for whatever you do. Sunday's pop station chal raha hai, sir. Madam, aap sabke phones aa rahe hai. 2-3 call mujhse miss ho gaye, but please call us back. Let us know your jam and we will play your song right here on the airwaves of Fun Asia. 972-235-5555. Pehla gana is segment ka humko Monica ne pehle se hi recommend kar diya hai break ke time hi. Aur unhone bola hai ye bahut zabardast gana hai. Yaad karke album tha Sonu Nigam ka. I'm sure almost everybody has heard this song, but I'm trying to remind you about those amazing memories of the early 2000s by playing this amazing song. Mohabbat Kabhi Maine Ki To Nahi Thi, the iconic song from the iconic album of Yaad by Sonu Nigam. Here we go.

0: इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन टू आ चुका है देवियों सजनों, अगर आपने नहीं देखा, इट्स ऑलरेडी क्रॉस 30 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। ओ माई गॉड, इन 24 आवर्स, दैट्स अ बिग बिग नंबर। एंड ऑफकोर्स इस बार तो नेटफ्लिक्स पे भी आ गए वो, तो आई डोंट नो हाउ द पार्टनरशिप वर्क्स बिकॉज दे आर लॉन्चिंग द एपिसोड ऑन टू प्लेटफॉर्म्स एट द सेम टाइम। सो द ओनली डिफरेंस इज ऑफकोर्स नेटफ्लिक्स में एड्स नहीं आते हैं, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, बट आपके पास प्रीमियम हो तो उसमें भी एड्स नहीं आते। सो आई डोंट नो वॉट how they're distributing, but of course I'm a big fan of that show. हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है उसमें, but obviously the overall vibe is just amazing. पहला episode में अभी I think Alia Bhatt and Sharvari आई थी to promote their new movie. It was a really interesting episode. If you haven't checked it out, I highly recommend it. वैसे मैं ये background इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमको एक listener ने गाना recommend किया है जो उस सीजन के पहले एपिसोड में बजा था। इस गाने का नाम है पीछे बॉम्बे, सुहासिनी का ये गाना है, काफ़ी वायरल जा रहा है अभी सोशल मीडिया पे बिकॉज ऑफ द लेटेंट। सो या दे हैव टोल्ड मी टू प्ले दिस सॉन्ग एंड इट इज अ पॉप सॉन्ग, इट इज राइट फॉर द सेगमेंट, देन आई एम प्लेइंग इट। हियर्स योर सॉन्ग पीछे बॉम्बे बाय सुहासिनी।
1: मॉर्निंग एवरीवन, वी हैव सेफली लैंडेड बॉम्बे, टेंपरेचर आउटसाइड 32 डिग्री सेल्सियस, बट आई होप यू एंजॉय द रेन्स, कीप फ्लाइंग।
2: ये चलता फिरता शहर इसकी धड़कन की धुन में मैं घूम हूँ, इन तारों से तारों की गलियों में बैठी मैं घूम।

All right, what an interesting song. Thank you so much for recommending, यार. And of course, ये तो episode मैंने देखा था, ये गाना मैंने पहले भी सुन लिया. I think this is one of those songs that grows up over the time, so it might need a little bit of time. Some people loved it, some people were like, meh. But yeah, you know, I like the video because इसमें मेरा गांव दिखता है मुझे. तो yeah, I really like it. Thank you. Ladies and gentlemen, keep them coming. 972-235-5555 is the studio का number. 972-235-5555 से स्टूडियो का नंबर. पॉप सेगमेंट ही चल रहा है तो मेक श्योर करो कि एल्बम के गाने हो, नॉट फ्रॉम द मूवीज. एक बहुत ही जबरदस्त ढिंचाक गाना हमको रेकमेंड किया है राज ने. थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई. एपी ढिलों एंड श्रेया घोषाल.

लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, पर कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक. इफ यू लाइक आवर शो, इफ यू लाइक आवर सेगमेंट, मेक श्योर यू गो ऑन इंस्टाग्राम @ प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI podcast. We talked with some amazing subject matter experts, from immigration attorney to dentist, doctor, Ayurveda doctor, matchmaker. Hum sabhi se baat karte hain. So we are having some interesting conversations. Please follow us on that journey. Hello.

Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family and loved ones. वैसे अभी वक्त हो चुका है हमारे blockbuster segment का, but थोड़ा सा twist है, ladies and gentlemen. हम थोड़े से emotional वाले गाने बजा रहे हैं. Of course, they have to be super duper hit. हमारा मोटिव ये नहीं है कि आपको रुला दे घर जाते समय, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा कनेक्ट कर दे फ्रॉम हार्ट टू हार्ट. सो वी आर प्लेइंग सम इमोशनल सॉन्ग्स, सो लेट अस नो इफ यू नो सम, मेक श्योर एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट सॉन्ग एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू अ शाउट आउट. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. नेक्स्ट गाना मुझे किसी ने रेकमेंड किया अभी, आई कुडंट कैच हर नेम, प्लीज कॉल मी अगेन एंड आई विल गिव यू अ शाउट आउट. क्यों मैं जागू फ्रॉम पटियाला हाउस. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आई होप यू गाइज लव इट एज मच एज आई विल.

such a beautiful song where a guy is just stuck between two worlds. पेरेंट्स ने बोला है कि आपको ये करना है, पर उनकी मन और उनकी इच्छा ये है कि उन्हें ये करना है. एंड दिस इज अबाउट अ करियर एंड इट्स अ रियल स्टोरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. इफ यू हैवन वॉच दिस मूवी, इट्स कॉल्ड पटियाला हाउस. इट हैज़ अ मिक्स्ड रिव्यू. सम पीपल लाइक इट, सम पीपल आर लाइक मैं, सम पीपल डिसलाइक द मूवी, बट ऑफ कोर्स इट्स it has a real story in it, so I would highly recommend you watch it if you have time. Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. Abhi hamara blockbuster segment chal raha hai, but hamara segment is bar hai emotional segment thoda sa, to thode se sadness wale gaane hum baja rahe hai. To abhi hame Sejal ji ne recommend kiya hai gana main yahan tu wahan, the iconic Baagban movie se liya gaya hai gana. Mere do teen iske bare mein thoughts hai is movie ke bare mein. Is gaane ke baad बात करेंगे.

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

ऑलराइट, काफी इमोशनल गाना। एंड ये उस टाइम जब ये मूवी रिलीज हुई थी, सारे पेरेंट्स ने मिलके जो टेढ़ी आंख से अपने औलादों को देखा, अपने अपने सन और डॉटर्स को देखा, जैसे कि हम ही विलन हो गए थे यार, बिना कुछ किए यार। ऑफ कोर्स दिस वाज इन अ वेरी इमोशनल मूवी, इट वेंट रियली वेल, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मूवी ऑल्सो ऑन द सैटेलाइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल टीवी पे भी जब आती है, हमारे जो मॉम डैड के जो जनरेशन है वो हमेशा ये मूवी देखते हैं। और कभी कभी जब बागबान लगी होती है ना टीवी पे, मैं तो निकल जाता हूँ यार घर से। मेरे को लगा है अभी कोई डिस्कशन नहीं करना है। बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ऑन दी अदर साइड। येस द किड्स कुड हैव डन अ लिटिल बिट बेटर, येस द किड्स कुड हैव गिवन द रिस्पेक्ट दैट द पेरेंट्स रिजर्व, बट यार टाइप राइटर ठोकने की क्या जरूरत है रात को यार, तो दिन में कर लो यार, शाम को कर लो यार। एंड ऑफ कोर्स जब समीर सोनी जो कैरेक्टर है, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था अमिताभ बच्चन के बेटे का, अभी रिसेंटली उन्होंने एक जेंजी इन्फ्लुएंसर के वीडियो को लाइक किया था एंड कहा था कि यस दैट इज राइट बिकॉज दिस गाय इज एन इंटेलेक्चुअल, बिकॉज ही आस्क्ड हिज फादर why he doesn't have an FDs, like fixed deposits, gratuity or savings. Like he used to work as a banker, right? तो आपके पास क्यों नहीं है ऐसे financial investments for yourself, for your wife as well, right? So it बहुत ही interesting video है Instagram पे, please make sure you go and check it out because it's real funny as well. I cannot explain it on radio. But yeah, ladies and gentlemen, keep him coming. 972-235-5555. अभी हमें नया गाना, किसी ने अभी नया तो है नहीं है, but ये गाना recommend किया है. We don't know the name. So, because what's in the name? तो हम ऐसा कहेंगे ये William Shakespeare ने हमें recommend किया ये गाना. सुन जरा from the movie Lucky.

लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि विशाल शेखर आ रहे हैं हमारे शहर में। डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। विशाल एंड शेखर, द ड्यूओ बिहाइंड सम ऑफ द बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर इन डैलस ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कल्विन सेंटर गार्लैंड। टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट cashpatelproductions.com।

right. Welcome back, ladies and gentlemen. If you're in an unfortunate event, if you're involved in a car or truck accident or a slip or a fall, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful. You need an attorney that will make sure you are compensated. You don't pay until you win. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. So, हमारे सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए थोड़े इमोशनल गाने का सेगमेंट चल रहा है. Of course, ladies and gentlemen, हमारे एक दोस्त है विशाल, उन्होंने मुझे कहा है कि ये मेरा फेवरेट गाना है और ये मैं गाना मेरी बीवी के लिए हर साल एक बार गाता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि सब ठीक ठाक रहे. ऑलराइट, तो उनका ये फेवरेट गाना है दिल दे दिया है. यार उनकी वाइफ ने मुझे बोला है कि ये उनका फेवरेट गाना है जो ये सजेस्ट करते रहते हैं. सो हियर वी गो विशाल, आपका गाना, ताकि हर पति सुन ले और समझ ले और आप ही की तरह आपके फुटस्टेप्स फॉलो करें.

इससे ज्यादा मैं ये गाना सुनूंगा तो मैं रो दूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑलराइट, हेडिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट सॉन्ग रेकमेंडेड बाय संजय, अजय अतुल का अभी मुझ में कहीं. व्हाट एन आइकॉनिक सॉन्ग संग बाय मिस्टर सोनू निगम फ्रॉम द मूवी अग्निपथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, दो तीन और गाने ले सकता हूं मैं बिफोर वी कॉल इट अ नाइट. 972-235-5555. द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द शो इज ऑफ कोर्स गोना बी फोकस्ड ऑन इमोशनल सॉन्ग्स. So let us know your jam and we will give you a shout out on the airwaves of Fun Asia. Abhi mujh mein kahin.

Such a beautiful song. It genuinely feels like Sonu Nigam gave everything while singing this song. What an amazing, beautiful song from the movie Agnipath, picturized on Hrithik Roshan and Priyanka Chopra Jonas. एक बहुत ही interesting call पे मेरी अभी बात हुई. उन्होंने बोला, यार आपका segment है emotional वाला. मैंने बोला हाँ. मैंने बोला आज हैप्पी फादर्स डे है. मैंने बोला हाँ. उन्होंने बोला ये दोनों को कंबाइन करके एक गाना रेकमेंड कर दूं. मैंने बोला यार 100 रुपए की बात बोली यार, बताओ कौन सा गाना है. एंड ऑफ कोर्स नन अदर देन पापा मेरी जा हर दम नग. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इफ यू हैवंट सीन, आई एम श्योर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज हर्ड दिस सॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स सोनू निगम ने ये गाना गाया है. इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स लेडीज एंड जेंटलमैन. सो हियर वी गो, पापा मेरी जान. और दो गाने बजा सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. 972-235-5555.

उफ यार, क्या इमोशनल कर दिया इस गाने ने. व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत मज़ा आ रहा है यार आज इस सेगमेंट में. बहुत सारे लोगों से बात भी हुई, दो चार लोगों ने और भी फादर्स डे के रिकमेंडेशंस दिए. बट ऑफ कोर्स वी जस्ट हैव 10 मिनट्स लेफ्ट. आई विल ट्राई टू फिट इन एज मेनी सॉन्ग्स एज आई कैन. बट ऑफ कोर्स एज यू नो टाइम इज़ नॉट अ फ्रेंड हियर. वी जस्ट हैव 10 मोर मिनट्स हियर. टू ऑल दोज फोक्स हु आर लिसनिंग टू अस, इफ यू स्टिल आर लकी इनफ दैट यू कैन कॉल योर डैड and he's still able to pick up the phone, do it. Just tell him we appreciate for whatever you're doing for us and whatever you have done for us, because we know you have done the best. You know, sometimes we always complain, but we tend to forget that, hey, acknowledging and also admiring all the steps that they have taken for the best of us is really important. For all the silent heroes in our lives, happy Father's Day. लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. नेक्स्ट गाना हमें संजनी ने रेकमेंड किया है. वैसे मैंने संजना नाम पर सुना था, पर संजनी पहली बार सुना. सो संजनी, आई होप आई एम नॉट बुचरिंग योर नेम, बट ऑफकोर्स उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है गाना बिन तेरे. बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, फ्रॉम आई हेट लव स्टोरीज. ये गाना उन्होंने बहुत टाइम से रेकमेंड किया था, बट ऑफकोर्स एक दो बैक टू बैक हमको फादर्स डे के सॉन्ग्स आ गए थे. बट हियर वी गो संजनी, हियर इज योर सॉन्ग.

0: मांगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा.
1: Hold up. Hey, woman, so be thinking we saw.
2: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार. दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूं इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से.
3: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
4: I'm loving the music.
3: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
4: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पनेशिया।
5: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
6: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Funasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dances.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
2: Hi this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US 104.9 FM Fun Asia Radio

ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार, ऐ ताली चलते

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio 104.9.
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं.
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं.
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं.
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
6: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: He's got very little time.

सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: हाँ भाई सेठी।
3: हाँ जी मनीपा जी।
2: पहुंच गए हैं?
3: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
2: ओ पार्टी दी कसरत है तेनू, हाले पार्टी करदा दे है तू।
4: पाजी उस गोरे से करने के बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
2: हो गए, बहुत साल हो गए, दादी नू मिलना आया जी एक बारी।
3: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
5: बिल्ली?
2: तू लगता है तू पैग लाए होया।
3: नहीं पाजी, इक्की बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
5: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा, मेरी
2: फ्लाइट है, तू सो जा।
3: पर दादी

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: नेहा, 4 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई।
3: I need your help. Please, Ronnie.

0: रकम।
1: वो बोले मुझे थोड़ा आगे चल।
2: Bring in South Asia closer, more closer. Phonesia 104.9 FM.

0: the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: tracks that put you on the right track.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी
8: हाय आई एम शाहरुख खान यू आर लिसनिंग टू फन एशिया

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Kaun hai ye log Kahan se aate hai ye
2: Jo Bollywood ka asli maza jante hain Fun Asia par hi aate hain

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
9: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
8: Renew?
9: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
8: What better way to celebrate than with something timeless?
9: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
1: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
11: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
17: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
16: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
18: बेटा, 95% आए?
19: हाँ मम्मी.
18: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
18: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
14: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
8: आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
12: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
8: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
12: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
20: Ladies and gentlemen, welcome to the show. Let's go ahead and get this week started for you after the summer solstice yesterday, which was the first, the longest day, actually, of the year yesterday. Now we are starting a new week here on this lovely Monday morning. It's the 22nd of June. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai. Chand sitare banai, zameen aasman banai. इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग आउट देयर।

0: Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
1: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
2: Documents ya parcel bhejni hai?
3: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
10: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: इट्स लॉसन।
13: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
14: इट्स लॉसन।
13: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
15: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
16: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
17: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, CT स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to Wealth Active.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
3: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.

0: हाँ उड़ता पंजाब, हाँ उड़ता पंजाब।
1: It is 10 o'clock.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
5: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
4: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
5: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
6: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
7: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara, now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
8: मामू, देखो क्या हो गया।
9: ओ, क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
9: ओए, जर्मन का कमाल है।
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
11: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
14: कहाँ?
16: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
17: Foodistan in Aubrey. Everything Desi. One place, one vibe.
18: Hey Dallas! Still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah! It's time to level up! If you got talent, we got you! Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you! Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas! Because the next viral Desi star could be literally you! For sponsorship,
19: sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू फनीजिया रेडियो 104.9 FM 22nd ऑफ जून एंड हमारे घड़ी में स्टूडियो के बजे हैं 10:07। तो मिला लीजिए घड़ी और आज का दिन एंड लेट्स बिगिन लेडीज एंड जेंटलमैन। दिस इज गपशप गली विथ मीठू।

आज सुबह आप में से किन किन ने जब वो क्लोजेट में आप गए और ढूंढने लगे कि क्या पहनना है सुबह निकलने के पहले, और कौन डिसाइडेड था और कौन नहीं डिसाइडेड था, इसी से समझ में आता है कि मंडे आपके लिए कितना वेलकम है। अगर डिसाइडेड था तो यू आर एक्साइटेड फॉर टुडे, और अगर नहीं तो ऑब्वियसली आप अभी भी वो हैंगओवर वीकेंड का जो है उससे जूझ रहे हैं। तो इस जूझने में हम आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी आज जूझ के ही आई हूँ। सीरियसली समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं, एंड देन इट अकर टू मी द डेज आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट ना, उन दिनों में मुझे पता होता है कि मैं जाऊंगी क्लॉजेट और ये निकालूंगी और ये पहनूंगी। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

सुबह जो बात कर रही थी ना, मतलब थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी मैं अबाउट यू नो वो सुबह उठ के क्या पहनना है, उस पर मुझे कॉलर ने बताया कि भाई ये सारे ड्रामे ना लेडीज के होते हैं, हम मेन के नहीं होते हैं. क्या ये वाकई में सही है कि मेन डोंट थिंक अबाउट व्हाट दे वांट टू वेयर, व्हाट दे हैव टू वेयर, और बस गए क्लोजेट में उठाया और पहन लिया? ये मैं आई थिंक जनरलाइज करना मुश्किल होगा इस मामले में. एंड लेट्स नॉट बी यार कि मर्द औरत, मेरे ख्याल से कई लोगों में मेरे ख्याल से ये कीड़ा होता है कि सुबह सुबह अच्छे से तैयार होके जाएं. कई लोगों में होता है यार कंफर्ट इज प्राइमरी. तो जो भी आपका आज का सिलसिला है, ये तो तय है कि भाई हफ्ते की शुरुआत हुई है और ये किस्सा हर सुबह का आपके लिए इन स्टोर फॉर यू दिस वीक एंड ऑल द अदर वीक्स कमिंग अप.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट

0: अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
1: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
1: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
3: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
4: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
3: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
13: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
14: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on FunAsia Radio.
15: And yes, you are tuned into FunAsia Radio 104.9 FM, Gapshap Gali with Me Too में आपका स्वागत है। If you are tuning in just now, आप लोगों को बताना चाहती हूँ about US permanent residency and that part that can be simplified if you are with attorney Seema Mehta and her team. अगर आप H1B, F1, L1 या किसी और non-immigrant visa पर हैं तो आपके लिए याद रखें, law offices of Seema Mehta का office हमेशा खुला है। Get appointment with her and she'll be able to help you exclusively in immigration law that they specialize in, including EB5 investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. Agar aapko EB5 investor visa program ke bare mein details chahiye na, you must give them a call or simply drop an email info@seemamehtalawfirm.com pe aur aapki life wahan se kafi aasan ho jayegi. That's what they promise. Educate yourself, you know, before going to anybody for any kind of service, zaruri hai ki aap unse baat karo. Get the vibe. I always say that and I'm going to say that again. You will know instantly that Seema Mehta Law Offices is the place for you to go and visit. Thank you once again for tuning in. This is Gapshap Gali with Me Too. That's going to continue right here.

फरहान अख्तर इन दैट सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी फरहान अख्तर के फैंस हैं, कि भाई एक बायोपिक के साथ जुड़ने वाले हैं, एडवांस टॉक्स में हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बायोपिक ऑफ द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर राहुल देव बर्मन. जी हाँ, आंटी बर्मन की बात हो रही है. एंड इट विल बी डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट. लेट 2026 में मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत होने वाली है. और गेस व्हाट, सारे जितने आइकॉनिक ट्रैक्स उनको इस फिल्म के लिए लेने हैं, वो उसके लिए राइट्स ऑलरेडी खरीद चुकी है द फिल्म मेकर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम एक्सट्रीमली कीन टू नो कि इस फिल्म के कॉम्पोजर कौन होंगे, बिकॉज दैट विल be a deal breaker और मेकर. तो देखा जाए कि आगे ये कौन जस्टिफाई कर सकता है. मेरे हिसाब से शंकर एहसान लॉय, आई वॉन्ट टू सी इधर देम और प्रीतम. आई थिंक दे विल जस्टिफाई आर डी बर्मन्स म्यूजिक कम्प्लीटली. नॉट टू अंडरमाइन अमित त्रिवेदी, बिकॉज टाइम एंड अगेन ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ. तो इंतजार रहेगा इस बायोपिक का, जो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ यार. और इसी एक्साइटमेंट को मद्देनजर रखते हुए दिस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. और याद दिलाना चाहती हूँ कि ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ जरूर जुड़े इफ यू वॉन्ट टू बाय योर फर्स्ट होम. दे आर रिलायबल, स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू. ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम इज द वेबसाइट एंड 972-245-5626 इज दैट नंबर टू कॉल.

यस, आर डी बर्मन का बायोपिक बन रहा है और इसी एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि ये गाना लगाया जाए और कुछ यू नो कंपोजर्स को याद किया मैंने कि जो जस्टिफाई कर पाएंगे आर डी बर्मन की अगर बायोपिक बन रही है उसमें अगर म्यूजिक अगर करना पड़े तो फिर वी नीड रियली ए सॉलिड कंपोजर या कंपोजर्स, क्योंकि मैंने प्रीतम और साथ में शंकर एहसान लॉय का नाम लिया, विशाल शेखर का कैसे मिस कर दिया, क्योंकि विशाल शेखर हैव डन अ टेरिफिक जॉब यू नो रिक्रिएटिंग आर डी बर्मन सॉन्ग. एक जो पंच जरूरत थी उस उनके लिए वो पंच वो लेकर आए. लेकिन अगर बायोपिक हो आर डी बर्मन का तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू रिटेन द एफर्वेसेंस ऑफ हिज म्यूजिक. और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं नीरज पांडे, वो जिन्होंने इवेंट्स डे स्पेशल 26 बेबी अयारी औरों में कहां दम था के अलावा ही इज डन अ बायोपिक एज वेल एंड दैट्स एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एंड वी नो हाउ मच वी लव्ड इट. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म दैट हैज नॉट येट स्टार्टेड बट फरहान अख्तर विल बी इन एंड एज आर डी बर्मन. Vishal Shekhar, who created R.D. Burman's music for Student of the Year 2.

0: टू रीमेक अ क्लासिक इज अ डॉन्टिंग टास्क. लेकिन विशाल शेखर वो जेन अल्फा वाइब लेकर आ पाए इस गाने में बहुत बड़ी बात है. एंड विशाल शेखर दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन संडे जुलाई 12th. सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट एट द कर्टिस कलविल सेंटर. और टिकट्स आपको cashpatelproductions.com पे मिल जाएंगी. और विशाल शेखर का म्यूजिक कितना कमाल होने वाला है, कितना मजा आने वाला है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है. जिन्होंने भी कभी पहले उनका अटेंड किया, you know the energy that they bring on stage and it is going to be one fantastic evening. मुझे ना ये बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बस फिसल जा रहा है मुंह से, क्योंकि विशाल शेखर का बहुत ही कमाल का होगा कॉन्सर्ट. Yes, super excited about that once again. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the communities together. 972-235-5555 number in the studio. Dallas is on fire, ladies and gentlemen. FIFA updates or trivias aapke liye between 12 to 12:30. Do not forget to stay tuned until then. And
1: is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya, kahin pe kala jadoo, dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
6: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
11: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
14: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
15: Calculating route, rerouting.
14: Arre, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
15: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
14: Kyun?
15: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
14: Achha, to seedha wahi le chalo.
16: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
15: Your new destination has arrived.
17: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
18: Tracks that put you on the right track.

And it is, ladies and gentlemen, Zabardast. That's the name of the film that you just heard the song from. और ये क्यों? क्योंकि आज एक दिन in the year 1988 released. और इसका box office कुछ नरम गरम ही था. कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी. Despite the fact that there was Sunny Deol, there was Jayaprada, there was also Rajiv Kapoor and also Rati Agnihotri. हाँ. मल्टी स्टारर फिल्म थी ये और इस फिल्म का ये गाना मुझे बेहद पसंद है तो आई नेवर लूज अ चांस टू प्ले इट व्हेन आई कैन फॉर ऑल ऑफ यू. टॉकिंग अबाउट सनी देओल, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फिल्म जिसने उनका जो है ट्रैजेक्टरी इन फिल्म इंडस्ट्री बदल के रख दिया था. एंड द नेम ऑफ द फिल्म घायल और ये रिलीज हुई थी आज के दिन जस्ट लाइक द फिल्म जबरदस्त. तो जी हाँ, इस सेगमेंट में ऐसी फिल्मों के गाने मैं लगा रही हूँ आप लोगों के लिए जो आज के दिन रिलीज हुई थी. लेट्स टेक यू टू घायल. एक ऐसा दिन 22nd ऑफ जून 1990 का, आई बिलीव 1990 था. आई एम क्वाइट श्योर बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एम राइट ऑन द ईयर हियर. ऑल राइट, जस्ट कंफर्म, यस 22nd ऑफ जून 1990, जब ना सिर्फ घायल लेकिन एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी. तो पहले तो आप घायल का गाना सुन लो, उसके बाद हम आते हैं दूसरे ब्लॉकबस्टर पे भी. राजकुमार संतोषी's movie was a big hit as we all know, starring Amrish Puri also in this one along with Meenakshi Seshadri.

जहाँ जहाँ जाएगी मैं आऊंगा वहाँ, भागेगी कहाँ ये सारी दुनिया है गोल, पीछा तेरा

that is, ladies and gentlemen, Ghayal, जो कि राजकुमार संतोषी की फिल्म, and it was a sweeping victory for Ghayal at the Film Fair Awards. National Award भी मिला था इस फिल्म को. मतलब आप सोचिए, आज की तारीख में in the year 1990, दो बिल्कुल ही अलग बैटल फील्ड में शामिल थे, दो अलग जॉनर के. इट वॉज अ क्लासिक बैटल ऑफ जॉनर्स, रॉ हार्ड हिटिंग एक्शन वर्सेज ए स्वीपिंग पैशनेट यूथ रोमांस. और दोनों ही फिल्म कमाल की रही बॉक्स ऑफिस पर, जस्ट टू प्रूव कि ऐसे इनफ ऑडियंस है हमारी दुनिया में कि जो कि दोनों ही फिल्म को अच्छा रिजल्ट दे सकती है. अब ये दूसरी फिल्म कौन सी थी जो इतनी रोमांटिक पैशनेट इस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका गाना आप सुनने लगोगे तो आपको नाम खुद ही पता चल जाएगा. मैं गाना लगाऊं? नाउ दिस वन आल्सो रिलीज ऑन दिस डे, June 22nd, 1990, स्टारिंग आमिर खान एंड माधुरी दीक्षित.

0: June 22nd, 1990 को इंद्र कुमार की ये फिल्म रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस हिट सुपर हिट फिल्म बनी थी. और June 22nd, 1990 को ये एक और फिल्म जो घायल जो रिलीज हुई थी, ए हेड टू हेड क्लैश कैनिबलाइजेस बिजनेस यूजुअली राइट, बट दीज टू मूवीज प्रूव दैट द मार्केट वॉज बिग इनफ फॉर बोथ द फिल्म्स एंड द मास्टर क्लासेस दैट दे वर. एंड सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे जो भी ये देखने जाते थे.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
4: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
3: Renew?
4: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
3: What better way to celebrate than with something timeless?
4: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
6: क्या?
5: सैलरी बंद हो जाती है.
6: और बिल्स बंद नहीं होते.
5: Exactly. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रैटेजी बनाते हैं.
6: मतलब?
5: ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
7: The Wealth Tactic. Smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai.
9: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
10: Tarikh par tarikh.
1: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
9: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
11: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, व्हाट?
1: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
1: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.
0: Yes, this is Fun Asia Radio 104.9 FM. सुन रहे हैं आप मेरे साथ और ये मेरा कहना बिल्कुल ज़रूरी बनता है कि आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है. जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू. दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई वांट टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट इज ए सॉन्ग दैट रिलीज जस्ट अ फ्यू डेज बैक, जुबिन नौटियाल के साथ एनाज नूरोज़.

नाइस सॉन्ग ना यार, मजा आया मुझे ये गाना सुन के. और सुबह थोड़ा सा सुना और सोचा कि बाकी आप लोगों के साथ ही सुनूंगी. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड इट ऑन माय शो एंड इफ यू लाइक इट, इट इज टाइटल्ड हुआ एंड दिस इज जो हो रहा है. द प्रोसेस इज ऑन एंड इट इज एंटरटेनिंग यू थ्रू म्यूजिक एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट एज वेल. क्योंकि मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ये आप में से कई लोगों ने कल एक्सपीरियंस किया, और कल के साथ ही ये चैप्टर खत्म नहीं होता. ये एक लंबी कहानी है जो आपके साथ शुरुआत हुई है कल PMJ Jewels की. एंड इट इज ओपन इन फ्रिस्को नाउ, ब्रिंगिंग ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी excellence and timeless Indian craftsmanship. मतलब stunning gold, diamond और bridal collection अगर आपको देखना हो और फिर खरीदना हो तो ज़रूर जाएं. मेरे लिए तो ये विंडो शॉपिंग भी ऐसी जगहों पर जाकर कितना मज़ा आता है सीरियसली. एंड यू शुड हैव रियली चेक्ड आउट द वाइब yesterday. जो गए ग्रैंड ओपनिंग पर कल, वो जानते हैं कि कल नहीं, एक्चुअली 20th of June मुझे कहना चाहिए, आज 22nd हो गया यार, कितनी जल्दी दिन बीत जाता है. सैटरडे की बात कर रही हूँ यहाँ पर. और कमाल का उनका जो ग्रैंड ओपनिंग हुआ, यू ऑल हु हैड गॉन देयर, who were part of the grand opening, have witnessed it first hand. नहीं तो भाई आप अभी भी जाके देख सकते हो कि ज्वेलरी की कलेक्शन तो सॉलिड है और जो वाइब थी वो कमाल की थी. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टा मनानी. एंड PMG जो है एक ट्रस्टेड नाम है. जेनरेशन्स आफ्टर जेनरेशन्स हैव बीन गोइंग टू दिस प्लेस, PMJ Jewels इन फ्रिस्को, फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर नाउ. इट इज़ ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी. थैंक यू वंस अगैन फॉर ट्यूनिंग इन. गपशप गली में आगे बढ़ते हैं और ये अगला गाना मैं आपके लिए लगाने लगी हूँ. एंड दिस गाना इज वन ऑफ योर फेवरेट्स एज वेल.

यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM और ये है गपशप गली विथ मी टू. पर आज ऐसे ही जनरली मैं देख रही थी नेशनल डेज जो सेलिब्रेट होते हैं ना, हर रोज कुछ ना कुछ होता है. मतलब दीज आर द डेज कि जो लोगों ने मन में आया और शुरू कर दिया, नेशनल अनियन डे से लेकर नेशनल किसिंग डे तक और नेशनल चॉकलेट एक्लेयर डे तक, सारा कुछ आज ही सेलिब्रेट किया जाता है. और इसमें एक और मैंने देखा एंड दैट वॉज पॉजिटिव मीडिया डे. मुझे लगा यार ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि किसी ने मुझे कभी इस बारे में इस जिक्र किया था. एंड थिंक अबाउट इट, यू इमेजिन वेकिंग अप टू अ न्यूज़ फीड दैट ओनली टेल्स यू गुड थिंग्स. कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई ऑफिस ड्रामा नहीं, जस्ट वाइब्स, यू नो. बट लेट्स बी रियल, क्या हम बिना थोड़े ड्रामे के बोर नहीं हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? डू वी नीड ओनली पॉजिटिव न्यूज़ और इस बैलेंस की? ये तो मतलब वाकई में सोचने वाली बात है. बट ऑन अ लाइटर नोट, मतलब अगर पॉजिटिव मीडिया डे मनाना हो तो अगर आप सोचो कि न्यूज़ चैनल में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव बातें बताई जाएँ, कितना मजा आएगा ना. मतलब ब्रेकिंग न्यूज भी ऐसा होगा कि आज सब खुश हैं, मैकडोनल्ड से लेके घर के कोनों तक सब खुश हैं. आज देश के सारे बॉसेस ने अपने एम्प्लॉयज की इतनी तारीफ की और साथ में बोनस भी दे दिया. या तो बातें हो गुड समैरिटन्स की, या तो बातें हो जस्ट गुड इकोनॉमी की, और बातें हो गुड वेदर की. अब ऐसा होना तो मुश्किल है भाई, डैलस में रहते हो. वेदर अपडेट कमिंग अप फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. बट यस, हैप्पी पॉजिटिव मीडिया डे टू ऑल ऑफ यू हु look for those only good news online. लेकिन कुछ और बात करेंगे इसके बारे में, थोड़े डिटेल में जाएंगे, थोड़े डीपर जाएंगे, थोड़े फिलोसॉफिकल भी बनेंगे. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

इट इज़ पॉजिटिव मीडिया डे, और इस बारे में मैंने आपसे कहा ना कि किसी से बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने कहा कि वॉट इफ कोई एक चैनल हो, न्यूज़ चैनल, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ कवर करे, तो वो कैसा रहेगा? तब मुझे लगा कि यार ये बहुत अमेजिंग रहेगा एक्चुअली, कि मतलब बंदा एंशियस ही ना फील करे, बंदा दुखी ही ना फील करे, अच्छी अच्छी खबरें पढ़े और एक पॉजिटिव वाइब रखे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड टॉकिंग अबाउट अस द ह्यूमंस, the creatures who actually look for

पॉजिटिव वाइब रखे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट इट इज़ नॉट रियलिस्टिक लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड टॉकिंग अबाउट अस द ह्यूमंस, द क्रीचर्स हु एक्चुअली लुक फॉर द रील्स एंड स्टफ दैट हैव बैड एंड सैड इन इट, पता नहीं एक अट्रैक्शन रहती है. नॉट दैट वी आर हैप्पी अबाउट इट, बट ये एक जनरल एक फितूर होता है लोगों का कि आप रील्स में भी देखोगे कि जहाँ पर कुछ मिसहैप्स हुए हैं या इस तरह का कुछ, लोग जाकर देखते हैं, दे वॉन्ट टू वॉच दोज वीडियोज़. और इसीलिए ऐसे सब वीडियोज़ में बहुत सारे यू नो व्यूज़ मिलते हैं लोगों को. एंड इट इज़ सैड, बट दैट्स द ट्रूथ. ऑनेस्टली क्या हम सच में खुश रहेंगे? आप सोच के देखें कि अगर केवल अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव न्यूज़ हो, बिना थोड़े मिर्च मसाले के, बिना थोड़ी बहस और रियलिटी चेक्स के, न्यूज़ थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी. डोंट यू थिंक सो? क्योंकि ह्यूमन नेचर जो मैंने कहा ना कि हमारा होता है कि हमें थोड़ा सा ना ड्रामा चाहिए होता है. अब बस हमारी फिल्मों को देख लीजिए, इतना सारा ड्रामा होता है, इसीलिए तो हम पैसे खर्च करके, वक्त खर्च करके जाते हैं ना देखने.

0: टाइम अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो. व्हाट यू हैव टू डू इज सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com या फिर टेक्स्ट करें उन्हें एट 217-454-4639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. एंड दैट्स पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दैट यू मस्ट रिमेंबर. यू कैन विजिट देयर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, passionhealthphysicians.com या टेक्स्ट करें एट 214-666-6259. और राइट, हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव मीडिया डे को सेलिब्रेट करने वाली बात. मुझे लगता है कि इट इज़ यू नो सॉर्ट ऑफ इजी टू थिंक दैट वी ऑल बी वास्टली हैप्पियर इन अ मीडिया बबल ऑफ प्योर ऑप्टिमिज्म, फ्री फ्रॉम द डेली बैड और सैड न्यूज दैट स्पाइक्स आर एंजाइटी. पर सच तो ये है बॉस कि अगर न्यूज में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी ना, तो ये सिर्फ बोरिंग ही नहीं बल्कि बहुत डेंजरस हो जाएगा. मानते हैं कि नहीं आप? जरूर मानते हैं. मुझे पता है कि कई लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि बैड न्यूज फिल्टर आउट करने से शायद एक पीस ऑफ माइंड तो शायद मिल जाएगा हमें, इसमें कोई शक नहीं है. बट देन इट कम्प्लीटली स्ट्रिप्स अवे आर सिचुएशनल अवेयरनेस. अगर कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला हो, या बाहर क्राइम बढ़ रहा हो, या कोई स्कैन चल रहा हो, या यू नो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मीडिया शेयर करती है हमारे साथ. अगर ना करें ना, तो इन सब के बारे में हम क्लूलेस रह जाएंगे. एंड द अनफेयरनेस अराउंड अस दैट नीड्स अ पब्लिक वॉइस एंड सपोर्ट विल बी लेफ्ट डेसोलेटेड एब्सोल्युटली. सो यस, पॉजिटिव मीडिया डे सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं, आई एम क्वाइट डाउटफुल. बाकी बताइए क्या चल रहा है, बाकी सब ठीक?
1: Hey, बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: बस चल रहा है भाई.
1: What about you?
3: हाँ चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है.
1: और तेरा?
3: बस चल रहा है. कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है.
1: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक,
3: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है.

एंड यू रियली फील गुड कि आप अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाओ और वो आपको अच्छे से वक्त दे, आपको सुने, आपको समझे और फिर कोई इलाज बताए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेट एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, लेडीज एंड जेंटलमैन. और यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपको बिल्कुल अपनों जैसा ट्रीट करते हैं. दैट इज़ व्हाट यू वुड लाइक अबाउट दिस प्लेस फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द नेम दैट यू हैव to remember, and they are growing their team, and इसमें आपकी contribution भी हो सकती है. अगर हमें सुन रहे हैं कोई doctors, endocrinologists, pediatricians या physicians, psychiatrists, ज़रूर full time या

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

0: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
2: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
3: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problem solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
11: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
12: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
11: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
13: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.
16: Tracks that put you on the right track.
17: And it is the attempt that we all have here. Tracks that put you in just the right mood and right track. It is Phanisha Radio 104.9 FM, bringing the community together. Gapshap Gali with Meethu mein ye agla gana dedication hai. Aur ye dedication hai father to his son who turned 15 today, Devin Rana ke liye ye gana very specially. Pata hai kyun? Kyunki ye number one gana chal raha hai hamare industry mein. धुरंधर का ये गाना, लेट्स ब्रिंग इट फॉर यू।

विशिंग देवेन राणा ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे. 15th मना रहे हैं और उनके फादर की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी और वो रिक्वेस्ट थी एक डेडिकेशन की. हमने नंबर वन गाना उनको डेडिकेट किया. और अगर इंडिपेंडेंट स्पेस में अगर बताऊं आपको ना, तो एक गाना जो ट्रेंडिंग है, इट इज दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स ब्रिंग इट ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन. योर रिक्वेस्ट, योर डेडिकेशंस, एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड. ऑलराइट, व्हाट आई हैव इन माय माइंड इस कुछ पूछा जाए आप लोगों से 972-235-5555. और वो है कि व्हाट इज दैट लास्ट थिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक और थ्रेड्स, वेयर एवर यू हैव सीन इट एंड यू हैव सेव्ड इट. वो सेव करने वाला जो फोल्डर है ना हमारा, वो इतना फैट हो गया ना, क्या ही कहा जाए. मतलब मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, आई टेल यू दिस, आई हैव मेड सो मेनी व्हाट्सएप विद मी माई सेल्फ अलोन इन दैट ग्रुप. और ग्रुप तो क्या कहना चाहिए, मैं अकेली ही हूँ उसमें. और मैंने अलग अलग, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि किसी में रेसिपी, किसी में गुड थॉट, किसी में अलग अलग मैंने फोल्डर्स बनाए ताकि मुझे कुछ उलझन ना हो. लेकिन इसके चक्कर में ये हुआ है कि जब तब जो मन में आया ना, सेव करती रहती हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ अपने. एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं देखती तक नहीं हूँ पलट के. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, यही तो बस जानना चाहती हूँ. एक्चुअली आई कैन बेट माय मनी ऑन दैट दैट यू हैव थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस एंड रेसिपीज एंड मीम्स सिटिंग इन देयर कलेक्टिंग डिजिटल डस्ट. तो बस लास्ट वो क्या सेव किया था, वही जानना चाहती हूँ. एज सिंपल एज दैट. एक्चुअली पता है, मैं अपना थोड़ा गिल्ट कम करना चाहती हूँ यहाँ पे कि केवल मैं ही ऐसी हूँ कि आप भी ऐसे हैं. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

और अगर ख्याल आता है तो कॉल कर लो यार, एज सिंपल एज दैट. आज का वो जमाना है कि हम कनेक्टेड रह सकते हैं, और हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए तो आप तक टाइम टू टाइम हम कुछ सलाह मशवरा हम देते रहते हैं आपको. फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी कार एक्सीडेंट में हो, स्लिप एंड फॉल कुछ इंसिडेंट हो, या वर्क प्लेस इंजरी हो, आपके लिए अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम हमेशा रेडी है टू हेल्प यू. एंड द प्रॉमिस दैट दे कम विथ इज़ यू डोंट पे अंटिल यू विन. ये कितनी बड़ी चीज़ होती है, हम सब समझते हैं इस बात को, राइट? एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव. और कॉन्फिडेंटली कॉल करें, फ्री कंसल्टेशन है, आप पता करें, बात करें, अपना पूरा केस समझाएं एंड सी व्हाट दे सजेस्ट यू. 4693005046 इज दैट नंबर. attorneyomar.com इज द वेबसाइट. फॉर द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, गेट इन टच विद देम राइट अवे. ऑल राइट, कुछ ट्रैफिक अपडेट इनकी तरफ से मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ. एक कोलिजन हुआ है 635 एट फॉरेस्ट लेन वेस्ट बाउंड पे, लेफ्ट लेन जो है वो बंद है, और इसीलिए ट्रैफिक बैकअप मिलेगा. अगर आप डिटोर ले सकते हो तो ज़रूर ले लीजिएगा. और इसके अलावा एक और कोलिजन है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ. इट्स ऑल्सो ए मेजर कोलिजन एंड इट इज़ ऑन 75 एट 190 नॉर्थ बाउंड, एंड यहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी कंजस्टेड है. राइट शोल्डर इज़ ब्लॉक्ड अलॉन्ग विद द टू राइट मोस्ट लेन्स. सो येस, इफ यू कैन पॉसिबली टेक अ डिटोर, डू टेक अ डिटोर, बिकॉज दीज बोथ दीज एक्सीडेंट्स आर मेजर. Let me just tell you all that. Once again, thank you very much for tuning in. And this traffic update was brought to you by attorney Omar Khwaja and his team. Ye agla gana, it is a dedication for all of you from Mariam and Sohail. Aur inke jab bhi call aata hai na, as a couple आता है, and that is the sweetest thing I like about them. जब भी रहते हैं साथ रहते हैं तो ये सियारा का गाना तो भाई इन्हीं के लिए है.

0: म्यूजिक में हो या हमारी जिंदगी में, कॉकटेल एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि हम अलग अलग फ्लेवर अपनी जिंदगी में लाने के लिए ना अलग अलग चीजें सेव करते हैं. और बस वो जो डिजिटल होर्डिंग होती है ना, उसी के बारे में जानना चाहती हूँ आप लोगों से. एंड टॉकिंग अबाउट कॉकटेल, बाय द वे, कॉकटेल 2 आप लोगों ने देखी क्या वीकेंड पे? डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फनीशिया फिल्म्स. बाय द वे, आप लोग ने अगर देखी हो तो आपको पता है कि भाई ये मूवी काफी पसंद की जा रही है. और अगर आपने नहीं देखी है तो भाई जान लें अपने दोस्तों से जिन्होंने देखी है, एंड देन that will give you that push to go and watch it at the theaters. क्योंकि थिएटर में देखने का मजा कुछ अलग ही है, ये हम सब जानते हैं, राइट? तो जरूर देखिएगा कॉकटेल 2 at your nearest theaters, distributed by Fun Asia Films. शाहिद कपूर, कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना हैव डन सुप्रीमली वंडरफुल जॉब. तो जरूर जाके आप देखें थिएटर्स पे. बाकी रही बात, ये जो डिजिटल होर्डिंग की मैं कर रही थी, मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज दैट लास्ट थिंग दैट यू हैव सेव्ड ऑन योर फोन, कि भाई ये मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी, या तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आई नीड टू सेव इट. क्योंकि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हम सेव करते हैं एंड फाइनली वी डोंट इवन गो बैक टू चेक देम, राइट? तो वैसी कोई चीज़ अगर आपके फोन पे, आखिरी व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू हैव सेव्ड ऑन योर फोन, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. ठीक है, थोड़ा देखें कि क्या, व्हाट इज द कॉकटेल that you make in those folders of yours, जो बेचारे ना जिनका दम टूट रहा है कि भाई इतना ठूस ठूस के क्यों भरते रहते हैं हम लोग. भाई नियॉन कैक्टस की तरफ से आप जरूर जाएं और ठूस ठूस के खाएं, क्योंकि यहाँ का खाना इतना यमी है, यू विल इंजॉय इट. मेक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, एंड दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज वन ऑफ यू इज गोइंग टू विन दैट $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन. अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं कि वो आखिरी चीज़ आपने क्या सेव की अपने फोल्डर में, ठीक है, या शेयर की लोगों के साथ और अपने पास भी इसका एक अंश रख लिया सॉर्ट ऑफ, ये सोच करके आगे चल के ज़रूर काम आने वाला है. इट इफ़ वी एक्चुअली ओपन्ड अप आर सेव फोल्डर्स राइट नाउ ना, वी वुड फाइंड हाईली स्पेसिफिक क्योटिक म्यूजियम ऑफ ह्यूमन इंटेंशंस. सबसे पहले तो आती हैं वो रेसिपीज़ जो हमें देखकर लगता है कि ये इतनी टेस्टी है, तो मैं कल ही बनाने वाली हूँ. या फिर वो वीडियोज़ आती हैं जो वर्कआउट की होती हैं, और ऐसा होता है कि मतलब ज़िंदगी में मतलब सब कल्याण हो जाएगा. अब कल्याण ही कल्याण है क्योंकि ये वीडियो सेव हो गया, अब तो मैं ये जरूर करने वाली हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. रियल लाइफ में हम सुबह उठ के वो बस अलार्म को स्नूज पे लगाकर वो सारे वीडियोस देख के हम खुश हो जाते हैं कि भाई सेव्ड है, जब जरूरत पड़ेगी तब हमारे पास अवेलेबल है. बाकी यही वाली वो वाली बात होती है कि भाई कॉलेज या स्कूल के दिनों में होता है ना कि आपने अगर अपने कोर्स का जो है जीरोक्स कॉपी बना के रख लिया, तो एक वो फील आता है अंदर से आपका कि भाई हो गया, सब पढ़ाई हो गई है. वैसी वाली चीज़ है ये सेव करने का जो डिजिटल होर्डिंग का जो मामला है. सो यस, गिव मी योर लेटेस्ट यू नो थिंग दैट यू हैव सेव्ड ऑन योर फोन, एंड ले जाइए नियॉन कैक्टस के तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड डाइन इन. नाउ हाउ क्रेजी इज दैट, वुडंट यू से? 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. ये कॉल लेते हैं और इन्हें देते हैं नियॉन कैक्टस, क्योंकि ये मेरी पहली कॉलर हैं. यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए जी.
1: Hi, yeah, so I have saved Vastu tips for my home, the things I can keep, which I can keep in the folder, and I can share it with my friends, whatever Vastu tips I can.
0: Vastu tips. And did you go back to check actually ki bas wo save kar liya aur baat khatam wahin pe?
1: No, I do go back and check, and I do apply them. I do check if things are at the right place or whatever I can do to modify them and place them at the right place, yeah.
0: See, ये तो हमें एक गुड स्टूडेंट मिल गई यार, हमें एक बैड स्टूडेंट की जरूरत थी. हमें पता करना था कि वो लोग जो कि सेव करते हैं और फिर उसे यूज नहीं करते हैं. आप तो अच्छी अच्छी अच्छी मतलब क्या कहना चाहिए, डिजिटल होर्डिंग आप नहीं करती हो फिर आप तो. थैंक यू. एनीवेज, नियॉन कैक्टस की तरफ से तो फिर भी आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप मेरे पहले कॉलर हो. नियॉन कैक्टस की तरफ से दिस स्पेशल गिव अवे, एंड दिस इज $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन गिफ्ट कार्ड फॉर यू. होल्ड द लाइन एंड आई एम गोइंग टू टेक योर डिटेल्स. ठीक है, थैंक यू.
1: थैंक यू.
2: चलो
3: क्या करूं, हौले हौले जो मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं.

0: क्या करूं, अगर आपका भी सवाल है, अगर आप डिजिटल होर्डिंग आप भी करते हो मेरी तरह, तो फिर संडे संडे को जाएं। और ये भी मैंने किसी रील में ही देखा था, वो भी सेव करके रखा है बाय द वे। तो हाँ, तो हर संडे को आप जाएं ऐसी फोल्डर्स में जहाँ पे आपने सारी ये रील्स मीम्स ये सारी चीज़ें सेव की हुई हैं, और फिर उसे जाके निर्दयी तरीके से डिलीट करें। दैट्स योर ओनली वे आउट, ठीक है? नहीं तो आप ऐसे होर्डिंग करते रहोगे और वाकई में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहोगे कि आप बाद में जाके दोबारा देखो, वो कभी नहीं आपको ढूंढ के मिलेगा। सो दिस इज द लिटिल टिप इफ़ योर क्वेश्चन इज ऑल्सो कि क्या करूँ। वैसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक गाना है जिसमें ना वो क्या करूँ का एहसास इतना डीप है दैट आई वॉन्ट टू प्ले इट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट इज़ कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक, लेडीज एंड जेंटलमैन। और अगले सेगमेंट में मैं आपके लिए फीफा अपडेट्स और ट्रिवियाज लेकर आती हूँ। आज कमाल का मैच शुरू होने वाला है एक मिनट के बाद, एंड इट इज़ अर्जेंटीना वर्सेज ऑस्ट्रिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग फायर इन आ बैकयार्ड। डैलस स्टेडियम में ये गेम शुरू होने वाला है और तहलका, हंगामा, एक्साइटमेंट, ऑल दैट वाइब राइट नाउ इन आर सिटी। मेसी इज गोइंग टू बी प्लेइंग, एंड वी नो कि क्या ही कमाल का एक वाइब होगा इन द स्टेडियम। हमारे कुछ फ्रेंड्स गए हैं देखने के लिए। आई एम कीनली वेटिंग फॉर ऑल द वीडियोज एंड एवरीथिंग। सो येस लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अर्जेंटीना वर्सेज ऑस्ट्रिया, एंड दैट आई विल बी डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट इन अबाउट 15 सेकेंड्स हियर। यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM। चलें एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आके कुछ फीफा अपडेट्स एंड ट्रिवियाज फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज गपशप गली विद मी टू, कंटिन्यू लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
10: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
14: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
13: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
14: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
10: इंट्रोड्यूसिंग लूमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी आईएसडी अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लूमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
6: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
18: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
19: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम।

Well, Argentina is going to be all right. It is playing against Austria today, और ये गेम ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं इस गेम को, एंड वील कीप यू पोस्टेड इफ एनी थिंग हैपन्स, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर मेसी ऑल्सो एंड मेसीज फैंस इज वेल, क्योंकि मेसी नीड्स जस्ट वन गोल वन असिस्ट टू बिकम द आउटराइट ऑल टाइम वर्ल्ड कप लीडर इन गोल्स एंड असिस्ट. असिस्ट इफ यू आर एज नॉविस एज मी, देन आपको बता दूं कि भाई फाइनल पास को कहा जाता है, तो इन दोनों केसेस में इनके हिस्ट्री इज इन मेकिंग राइट हियर इन डैलस स्टेडियम. एंड इतनी कमाल की बात है कि हम भी जुड़ चुके हैं मेसी के साथ इसी न्यूज़ के साथ, एंड वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट नाइट for the game, kyunki great day for the game. Let me tell you all the other matches happening later today. Group I action takes over when France goes head to head against Iraq in Philadelphia. Aur Iraq ke liye after losing the last game, it is a big match that they are playing today, aur ek bade comeback ki zarurat hai. Then prime time football hits the screen as Norway battles a fiercely physical Senegal team in New Jersey. Aur of course Algeria aur Jordan ka jo ye match hone wala hai, लॉगहेड्स पे होने वाले हाई स्टेक्स डू और डाई वेस्टर्न क्लैश इन सैन फ्रांसिस्को दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड इट इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग डे फॉर ऑल फैंस फॉर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया इफ यू आर रूटिंग फॉर. और ये यहीं पे हो रहा है, हमारे बैकयार्ड में हो रहा है, और इससे कमाल की बात जैसे कि मैं कह रही थी कोई नहीं है. नंबर 21 ऑस्ट्रिया फेसेस द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट अगेंस्ट टॉप रैंक्ड अर्जेंटीना, एंड देखते हैं क्या होता है. फिलहाल वी आर लेट्स सी वेरी क्विकली इफ आई कैन टेल यू एनीथिंग फर्दर अबाउट दिस वन राइट हियर. इट इज 10 मिनट्स, अ लिटल ओवर 10 मिनट्स, एंड राइट नाउ अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रिया हैवन बीन एबल टू स्ट्राइक एनी गोल. दैट बींग सेड, लेट्स keep the josh on the airwaves of Funisha Radio 104.9 FM.

अगर आप कई लोगों की तरह बिजी रहे कल और मैचेस नहीं देख पाए तो लेट्स ब्रिंग यू एब्सोल्युटली अप टू डेट विद फीफा वर्ल्ड कप 2026. वेल, यस्टरडेज फीफा वर्ल्ड कप एक्शन वाज एन एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर ऑफ मैसिव रिजल्ट्स एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक्स. सबसे बड़ी न्यूज, या तो यू कहना चाहिए सबसे बड़ा गेम जो था वो एटलांटा में था, स्पेन और सऊदी अरेबिया के बीच में, और 4-0 ऑब्वियसली स्पेन वन. लेकिन ऐसे गेम में मजा नहीं आता, आई हैव टू से दैट यार. वो लास्ट मिनट का, वो जब तक वो टग ऑफ वॉर नहीं होना कि किसके किसके हिस्से जाएगा वो गोल, तब ना मजा नहीं आता. ये मतलब वर्ल्ड कप वाली फील नहीं आई इस गेम में, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. वेल, स्पेन प्ले टेरिफिक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. वहीं दूसरी तरफ एले ले चलते हैं, और बेल्जियम और ईरान का हाई ऑक्टेन मैच जो 0-0 पे ड्रॉ हुआ वो भी कमाल का था. एंड ईरानियन गोलकीपर अली रेजा, ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन, लेजेंडरी मास्टर क्लास जो उन्होंने ली, पुलिंग ऑफ 7 मैसिव सेव्स टू डिनाई द रेड डेविल्स, और कमाल का था, रियली कमाल का था वो गेम. मीनवाइल डाउन इन मायमी, वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स केप वेयर दे पुल्ड ऑफ ए स्टनिंग 2-2 tie against two-time champions Uruguay. Can you imagine that? They are at an impressive level that they are playing, and that's Cape Verde, ladies and gentlemen. Or saath mein, let's talk about the Faroes here. They have a record first. Egypt took down New Zealand 3-1 in Vancouver, and this also happened yesterday to secure its first ever win at the Men's World Cup, with स्टार मो साला लीडिंग द पुश. सो ये आपके लिए थोड़ा अपडेट था, और अपडेट हमारे डैलस स्टेडियम से. अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया में अभी तक 15 मिनट हो चुके हैं गेम के, इंचिंग टुवर्ड्स द 16th मिनट, अभी कोई गोल नहीं हुआ है. जस्ट एफआईआई, दिस इज फीफा अपडेट्स एंड ट्रिविया सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू.

If you are planning to, you know, sell or buy or relocate in Dallas Fort Worth area, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, क्योंकि हमें पता है कि हाउसिंग मार्केट यहाँ का कितना इंटेंस है. और मैं आपको एक नाम बताने वाली हूँ जो एक आपकी ना वन ऑफ योर फेवरेट वॉइसेस ऑन आर रेडियो एंड अल्टीमेट रियल एस्टेट गाइड भी. ये नाम है नवनीता का. जी हाँ, शी इज़ जस्ट नॉट अमेजिंग आरजे, बट ऑल्सो शी इज़ ए लाइसेंस रियल एस्टेट प्रोफेशनल विद केलर विलियम्स रियल्टी राइट हियर इन डैलस फोर्ट वर्थ. वेदर यू वॉन्ट टू बाई योर वेरी फर्स्ट ड्रीम होम, या फिर आप बेचना चाहते हैं टॉप डॉलर्स पे, या आप कंप्लीटली नया और कुछ नई जगह और कुछ नया कुछ करना चाहते हो डैलस फोर्ट वर्थ एरिया में, बेसिकली सेइंग कि अगर आप रीलोकेट करना चाहते हो, तो नवनीता हैज गॉट योर बैग. उन्हें DFW का कोना कोना पता है और वो हमारी कम्युनिटी की नीड्स को सबसे बेहतर तरीके से समझती हैं. तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है.

चाहती हूँ, तो नवनीता हैज गॉट योर बैग. उन्हें DFW का कोना कोना पता है और वो हमारी कम्युनिटी की नीड्स को सबसे बेहतर तरीके से समझती हैं. तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्ट कीजिए नवनीता के साथ एंड कनेक्ट कीजिए केलर विलियम्स रियल्टी पर उनके साथ. एंड यू कैन मूव विथ ट्रस्ट, मूव विथ योर फेवरेट आरजे. And guess what? She's just a phone call away. 347-449-4242. That's the number that you need to save. FIFA World Cup and that neon pink color. Let's talk about right after this song right here on Fun Asia Radio 104.9 FM.

Argentina versus Austria. I'm sorry. It's Argentina versus Austria, and we are 23 minutes into the game at Dallas Stadium, and Argentina are applying sustained pressure, pushing Austria deeper and keeping them pinned in their own half as they search for openings. All right, that's the little update from Dallas Stadium. Abhi color ki baat karne wali hu, rang ki baat karne wali hu, because every single World Cup leaves behind an iconic visual calling card, like you know the wild Jabulani ball in 2010, फिर मेसी का वो जो ट्रॉफी उठाना in 2022, पर 2026 वर्ल्ड कप का अल्टीमेट विजुअल आइकॉन कुछ और ही है, एंड इट्स ब्लाइंडिंग पिंक फुटबॉल बूट्स. नो मैटर विच टीम इज प्लेइंग, एवरीवेयर यू लुक प्लेयर्स आर वेयरिंग फ्लोरा पिंक, और एक हॉट पिंक कह सकते हो, उसे फूशिया पिंक कह सकते हो. सारे बिग ब्रांड्स ने इस बार पिंक कलर के पैक्स लॉन्च किए हैं. वंस यू नोटिस इट, यू लिटरली कैन नॉट अनसी इट ऑन द पिच, विच बेग्स द क्वेश्चन, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? डू यू वांट आंसर्स फॉर दैट? तो पहला रीजन तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये पूरे मार्केटिंग और बिजनेस का खेल है. डिजाइनर्स पॉइंट आउट दैट नियॉन पिंक क्रिएट्स एन इनसेन वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्ट अगेंस्ट द ब्राइट ग्रीन ग्रास. तो आप चाहे टीवी पे देख रहे हो या आपने फ़ोन पे देख रहे हो, ये जो एक स्टैंड आउट कलर है ना, ये इसी रीज़न से रखा गया है पिंक, ठीक है. लेकिन एक डिज़ाइनर ने इसका एक अलग और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी दिया है, एंड दे क्लेम इट्स ए ब्रिलियंट वे टू स्टर अप कॉन्वर्सेशन एंड लेट प्लेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स बियॉन्ड द बोरिंग ओल्ड स्कूल ब्लैक एंड वाइट क्लीड्स. फुटबॉल एक बहुत ही ट्राइबल स्पोर्ट है जहाँ इंटेंस राइवलरीज होती हैं, सो इट्स काइंड ऑफ नाइस टू सी ऑल द प्लेयर्स यूनाइटेड in one color. So that's another reason there. Lekin boss, teesra aur sabse

बड़ा रीजन इस कलर का जो है, इट्स प्योर फैशन साइंस. एंटर WGSN, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेंड फोरकास्टिंग एजेंसी दैट प्रिडिक्स व्हाट विल यू नो व्हाट विल बाय इयर्स इन एडवांस, बट व्हाट पीपल विल बाय इयर्स इन एडवांस वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं. उन्होंने 2024 में ही अनाउंस कर दिया था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूजिया जो कलर है प्योर 2026 का सबसे बड़ा कलर ये ट्रेंड होगा फॉर श्योर. सिंस डिजाइनिंग एक जो है प्रोफेशनल फुटबॉल बूट का वो एक सॉलिड टाइम लेता है. इट इज़ नॉट अबाउट 6 months और अ ईयर्स थिंग दैट इट टेक्स. कुछ साल लगते हैं, 2 साल इस केस में, और वो स्केचिंग और सैम्पलिंग और टेस्टिंग सब कुछ होता है एंड देन फाइनली दे लॉक द कलर एंड ऑल ऑफ दैट, द डिज़ाइन एंड ऑल ऑफ दैट. सो येस, दैट लाउड नियॉन पिंक ट्रेंड दैट यू सी, यू कैन नॉट मिस फॉर एनीथिंग आफ्टर दिस.

0: होपफुली रंग बिरंगे गाने सुन के आपको भी मजा आया. वेल आई हैड अ ग्रेट टाइम विथ ऑल ऑफ यू. और बस वक्त है मेरे जाने का और सिमी को कवर करने के लिए आ रही है रिमिता. सो वेलकम हर विथ अ ब्रॉड स्माइल एंड गुड चॉइसेस ऑफ सॉन्ग. ऑलराइट, दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ.
1: आवर एनिवर्सरी इज कमिंग अप, शैल वी रिन्यू आवर वाउज?
2: एब्सोल्युटली. एंड व्हाइल वी आर एट इट, आई शुड रिन्यू सम ऑफ माय ओल्ड ज्वेलरी टू.
1: रिन्यू?
2: या, आई विल एक्सचेंज इट एट तनिष्क फॉर द डिजाइन आई हैव बीन आइंग फॉर अ व्हाइल. दे टेक ओल्ड गोल्ड अबव 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर फॉर full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
9: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी.
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
9: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइज़र वे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
16: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
15: क्यों?
16: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
15: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
14: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
16: Your new destination has arrived.
17: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful track requested by Safi, one of our most ardent followers, yani ki ya listeners keh sakte to the Fun Asia Radio in Dallas. And that's exactly where you are listening to. Hello, namaskar, sasri akal, adab, kem cho. And personally, bhalo acho. This is Rumita and I'll be, kya karu, main covering bol sakti hu ya aapke saath time bitane ke liye. I have been assigned या फिर मैं हूँ आपके साथ इस हफ्ते, इस पूरे हफ्ते on the show Afternoon Adda, which is 12:30 to 2:30 PM only on your Dallas की धड़कन Fun Asia Radio. और आज आपके लिए ये दो घंटे Monday ना थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ही मैं आई हूँ. सच बताइए, आज सुबह अलार्म बजते ही पहला थॉट क्या था? यार कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग वीकेंड था, जून 13 था ना फ्राइडे को, सो बहुत सारे लोग उसी लॉन्ग वीकेंड के हैंगओवर से अभी तक उतर ही नहीं पाए. और सच में जब वीकेंड खत्म होता है तो लगता ही है यार बहुत जल्दी खत्म हो गया है, और कैसे हो जाता है. यू नो, फ्राइडे को लगता है कि लाइफ एकदम सॉर्टेड है, संडे रात को लगता है कि नोप, वी हैव टू बी बैक टू द डिसिप्लिन फ्रॉम मंडे मॉर्निंग. और ये डिसिप्लिन भी सो रहा होता है हमारे साथ ही. तो आज के इस आफ्टरनून अड्डा में बात होगी हम सबके मंडे स्ट्रगल्स की, ऑफिस के एक्सक्यूजेस की, अडल्टिंग के साइड इफेक्ट्स की, और उन छोटी छोटी बातों की जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है. स्टे ट्यून, म्यूजिक भी होगा, मस्ती भी होगी, और मेरी कंपनी भी ओनली ऑन आफ्टरनून अड्डा ऑन योर फेवरेट स्टेशन 104.9 FM Fun Asia Radio.

लव का तो पता नहीं, पर विद फनी शार रेडियो बैक टू बैक गानों के साथ और हमारे आरजीज की खूबसूरत खूबसूरत कहानियों के साथ, इट इज नेवर अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू डैलस। यू आर लिस्निंग टू 104.9 एफएम फनी शार रेडियो। मैं हूं रमिता, ओनली हर शो आफ्टरनून अड्डा। और इस वक्त पूरा डैलस, क्या फिर कह सकती हूँ, पूरा ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया फुटबॉल फीवर में है और सबकी आंखें डैलस में है क्योंकि अर्जेंटीना का मैच हो रहा है यहाँ पर, राइट हियर इन डैलस विद जॉर्डन। और ये जो स्टेडियम में, अगर आपको फोमो है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स स्टेडियम पहुँच चुके हैं, मैच देख रहे हैं, हाफ टाइम हो चुका है और तो और अर्जेंटीना का एक गोल हो चुका है बाय नन अदर देन लियोनेल मेसी हिमसेल्फ। जी हाँ, अगर आप फुटबॉल फैन हैं और इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो अर्जेंटीना के स्पेसिफिकली ज्यादा कुछ ज्यादा ही फैन है, तो खुश हो जाइए क्योंकि अर्जेंटीना एक गोल से आगे है। और जैसे कि मैं कह रही थी, अगर आपको फोमो है तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको अपडेट्स देती रहूंगी और मूड को भी स्टेडियम जैसा एनर्जेटिक भी रखूंगी। और वैसे भी मैच लाइव नहीं है तो क्या हुआ, म्यूजिक तो लाइव हो सकती है ना। यहाँ गोल्स की जगह बैक टू बैक गाने मिलेंगे आपको और कमेंट्री की जगह मेरी बक बक। तो वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए, आफ्टरनून अड्डा में आज भी अभी भी बहुत कुछ बाकी है।

0: यू नो, मेरे लिए हमदर्द का मतलब आजकल यही होता है कि ऐसा कोई हो जो मेरा दुख समझे, दर्द समझे, और पिछले 13 साल से ऐसा ही कुछ कर रहे हैं टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक
1: हमारे घर पे हे
2: हे प्रभु,
1: हे प्रभु,
2: हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ?
0: वेल, नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लुनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज और सिटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड पास सर्विसेज, सभी अंडर वन रूफ अंडर द नेम लुनॉक्सी मेडिकल बाय द टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक. ओपन ऑल 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM to 8 PM and you can walk in anytime. आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है. सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनीशिया रेडियो. दिस इज आफ्टरनून अड्डा, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट द थिंग्स जो कि हम अक्सर बोल नहीं पाते, बट हमारे दिल में बहुत कुछ होता है. उसी के बारे में चर्चा होगी, फॉलोड बाय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सैयारा.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
13: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
11: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
0: Beta, 95% aaye?
14: Haan, mummy.
0: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
15: Mera?
0: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
16: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
17: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स, रिएक्शंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स? मे बी इट्स टाइम टू चेंज द पैटर्न। आरती वेदुला, अ सर्टिफाइड एंड अक्रेडिटेड कोच, हैज हेल्प्ड कपल्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स ब्रेक फ्री यूजिंग NLP, EFT, हिप्नोसिस, टाइम टेक्निक्स एंड सोमैटिक माइंड बॉडी कनेक्शन। कॉल 269-281-1099 और विजिट thrivewitharti.com टू बुक योर फ्री क्लैरिटी कॉल टुडे। मेंशन फन एशिया एंड रिसीव 50% ऑफ योर पैकेज। थ्राइव विद आरती, हेल्पिंग यू थ्राइव फ्रॉम विद इन।
18: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

10 minutes past 1 o'clock. It's a Monday afternoon, 22nd June is the date, and you're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. Afternoon Adda mein main hoon Rumita aapke saath, aur is Monday ke afternoon mein bekhayali mein mujhe to weekend ke hi yaad aa rahi hai. Aapko bhi kya aa rahi hai? Agar aap is 3 din ke matlab is long weekend ke weekend लग्जरी के शिकार हो तो आज का ये आफ्टरनून आपके लिए बहुत ही दर्दनायक है. और सच बताओ, कल इंस्टाग्राम पे रात को ये न्यू वीक न्यू गोल्स न्यू माइंडसेट का जो कोट पढ़ा था डूम स्क्रॉल करते वक्त, और ये मंडे मोटिवेशन का ये जो स्कैम आपने खा लिया था, आज सुबह बस 5 मिनट और ये जो तड़का हम अपने सुबह अलार्म क्लॉक में लगाते हैं उसका क्या करें. यू नो, हम सब मंडे को अम्बिशियस वर्जन ऑफ आर सेल्स, यानी कि जो ये करेंगे अगले मंडे से हम जिम जाएंगे, डाइट शुरू करेंगे, सेविंग्स करेंगे, और एक्चुअल वर्जन जो हम बाय द टाइम आफ्टरनून आ जाता है मंडे को, वी रीच दैट पॉइंट राइट, कि जब रियलिटी हिट करती है. क्या ख्याल है, आप भी इस दौर से गुजर रहे ना मेरी तरह? आई नो आज डालस में एक बड़ा सा मैच है, पार्शियली माइंड आपके ऑफिस में है, और पार्शियली यानी कि फुल्ली मोड ऑन है आपका. फुटबॉल फिनेटिक अगर आप हो, डालस में अर्जेंटीना का मैच चल रहा है तो दिमाग तो वहीं पे जाएगा. ऊपर से ये मंडे का काम, खूनी मंडे है ये. अगर आप भी अपने ही प्रोमिसेस से नेगोशिएट कर रहे हैं आज, तो वेलकम टू द क्लब. बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस ब्यूटीफुल गाने के बाद आ रहा है आपका गिव अवे, जीतने का मौका. अरे यार, कुछ तो अच्छा हो जाए, आज मंडे है यार.

यार सबको अगर धड़क चाहिए तो मेरे गिव अवे का क्या होगा? गिव अवे किस किस को चाहिए, हाथ ऊपर करो। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो। मैं हूँ रमिता एंड दिस इज आफ्टरनून अड्डा दैट यू आर लिसनिंग टू एंड इट्स दैट टाइम ऑफ माय शो जब आपके लिए हाजिर है चंडीगढ़ बाइट से एक गिव अवे, यानी कि कढ़ाई पनीर या फिर कढ़ाई चिकन, कोई भी आप एक चूज कर सकते हो अगर आप जीत गए दिस गिव अवे फ्रॉम द चंडीगढ़ बाइट्स विच इज लोकेटेड इन एलन। सिंपल सवाल है, आपको गेस करना है इस अगले गाने का जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ। इट्स अ वेरी पॉपुलर ट्रैक एंड अ वेरी पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन। यू जस्ट हैव टू गेस द नेम ऑफ द मूवी एंड यू कैन विन द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स विच इज लोकेटेड इन एलन। उसके साथ साथ एक स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे भी आप वहां पे, आई मीन दिस इज नॉट अ गिव अवे, फिर वहां पे जाके मत बोलना, रमिता ने कहा था, बट यू कैन ऑल्सो हैव दिस टेस्ट ऑफ दिस थाली दैट दे प्रेजेंट विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच only in Chandigarh Bites. Surya ka number is 972-235-5555. Call me and tell me the name of the movie.

यार क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। बैक टू बैक कॉल्स आते हैं गिव अवे के टाइम में और मजा आता है कि जब आप लोग गलत जवाब देते हो। वैसे तो मुझे सही जवाब मिल गया है बट मैं दो तीन ऐसे जवाब बोल ही देती हूँ जे मुझे मिल गया जो आंसर इज करेक्ट विच वॉज गिवन बाय हिमांशु पटेल। कंग्रेचुलेशंस हिमांशु जी, यू हैव वन इट। एंड येस इट इज जब हैरी मेट सेजल। बट मजे की बात यह है कि दो तीन लोगों ने गलत गलत आंसर्स दिए। किसी ने कहा कि सोच ना सके। आई नो इम्तियाज अली की फिल्म है ये बट वो तो उनकी पहली फिल्म थी ना, सोचा ना था। आई गॉट कन्फ्यूज। और फिर एक जन ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि ये तो जब वी मेट सेजल से है। आई मीन ठीक है, इट इज फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल, बट इतना कन्फ्यूजन अलाउड नहीं है DFW वालो। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, दिस इज रमिता। एंड एज आई सेड, कंग्रेचुलेशंस हिमांशु पटेल, यू हैव गॉट दिस गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स विच इज लोकेटेड इन एलन। एंजॉय दिस प्राइज।

और कुछ लोग लंच के बाद लैपटॉप देखकर ही स्लीप मोड में चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीम्स पे तो ग्रीन दिखते हैं पर उनका सोल ऑलरेडी नैप मोड। एज आई सेड, लंच के बाद का जो ये 1 से 3 का जोन होता है ना, वही असली टेस्ट होता है आपके कॉर्पोरेट लाइफ का। वैसे आप क्या फील कर रहे हो अभी? इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ ऑन फनी शेयर रेडियो, टेल मी व्हाट इज योर लंच ब्रेक पर्सनालिटी कॉलिंग यू।

26 minutes past 1 o'clock, you're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. और अचानक से मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की है कि ऑफिस में ना हर इंसान लंच के बाद कंप्लीटली एक अलग पर्सनालिटी बन जाता है. कुछ लोग लंच के बाद हाइपर प्रोडक्टिव होते हैं

0: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
1: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
9: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, Hub 121 McKinney.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट, मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी. रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
13: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
14: Documents ya parcel bhejni hai?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
17: सच में? सब संभालेंगे.
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
19: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

1:37 p.m. by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. Main Hurmita, and this afternoon, Adda, I am with you and I'll be staying with you till 2:30 p.m. today. और कुछ देर पहले मैंने कुछ सवाल पूछे थे आपसे कि ये लंच ब्रेक पर्सनालिटी क्या है, और ये जो गाना मैंने प्ले किया था, दिस वॉज डेडिकेटेड टू शाहीना, जिन्होंने थोड़ी देर पहले कॉल किया मुझे और उन्होंने बताया कि यार मैं अभी लंच कर चुकी हूँ और इसके बाद मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, और इस मीठा खाने के साथ साथ मैं अपना घर का काम कर रही हूं और मेरे कानों में चल रहा है 104.9 FM Fun Asia Radio, and thanks to me and my team कि उनका दिन आज बहुत ही अच्छा जा रहा है. यार DFW, जब आप लोग मुझे या हमें हमारी इसको स्टेशन पे कॉल करते हो और बताते हो कि आपका दिन हम बना रहे हैं, हमारे गाने बना रहे हैं, हमारी बातें बना रही है, तो ये सुन के हमारा दिन बन जाता है. थैंक यू एक्चुअली सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, रीलिविंग योर मेमोरीज विद अस, एंजॉयिंग द सॉन्ग्स विद अस एंड ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर विद अस. मूविंग ऑन, इस शो में आपको मिलेगा अगला मौका गिवअवे जीतने का. बस ये जो अगला ट्रैक है, इस ट्रैक का ना एक हिस्ट्री है. हिस्ट्री ये है कि दिस इज अ रिप्राइज्ड वर्जन. आपको सिर्फ गेस करना है कि ये जो एक्चुअल पेयरिंग था इस गाने का, उनका नाम क्या है. सिंपल सा सवाल है. स्टूडियो का नंबर इज सिंपल. अब तक तो आपको रटना आ गया ही होगा. 9722355555. कॉल मी एंड टेल मी द लीड पेयर. लीड पेयर का नाम बताओ ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग. हियर यू गो.

0: We miss you, Katrina.
1: We miss Katrina as well in the Welcome to the Jungle movie. Ji haan. This was taken from the movie Welcome to the Jungle, but the original one had featured Akshay Kumar and Katrina Kaif. And as Akshay Kumar rightly says, we miss her. Yaar, Disha Patani to theek hai yaar, but kya kare? Miss Kaif is Miss Kaif. Or rather, Mrs. Kaushal is Mrs. Kaushal. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. Or विनर का नाम है मिली, जिनको मिला है एक फन पिज्जा किचन से $10 गिफ्ट कार्ड. कंग्रेचुलेशंस मिली, आपको मिल गई है एक तंदूरी चिकन या अचारी पनीर पिज्जा, यू नो, देसी स्टाइल पिज्जा खाने का मौका. तो जाइए हमारे फन पिज्जा किचन फ्रिस्को स्टोर पे और अवेल कीजिए ये ऑफर. मिली का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट है, वो रोज इस वक्त फनीशा रेडियो सुनती है, यानी कि उनके ये जो कुकिंग, उनका जो ये कुकिंग टाइम है, उनके साथ साथ हमारे जो बातचीत, चिट चैट, गाने चलते रहते हैं, उनकी वो डेली साथी है, या रादर हम उनके साथी है, और रादर ये हम बोल सकते हैं कि वो हमारे है लवर. व्हाट डू यू से?

0: वैसे मुझे पता नहीं कितने लोगों को अभी तक ये पता है, अगर आप दिलजीत दोसांझ का इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो बहुत ही रिसेंटली उन्होंने पोस्ट किया था कि ही हैज अ डे. यस, एले में उनका जो बर्थडे है, आई थिंक दिस इज 6th of January, और एले में लॉस एंजलिस में दिलजीत दोसांझ डे इज बीन सेलिब्रेटेड गाइज. यस, दिलजीत दोसांझ डे, विच इज हिज बर्थडे, और इट इज टर्म्ड एज अगेन, इट्स द इंटायर डे इज नेम्ड आफ्टर दिस रॉक स्टार. कैन यू इमेजिन? आई मीन, हाउ प्राउड आई एम ऑफ दिलजीत दोसांझ. वैसे तो पर्सनली आई एम अ बिग फैन. अब कंफ्यूज हो जाती हूँ किस चीज़ की फैन बनूँ मैं, इनके पर्सनैलिटी की, पहली बात जो है इनकी पर्सनालिटी की, इनकी एक्टिंग स्किल्स की, इनकी जो सिंगर है वो काफ़ी मतलब तोड़ू फोड़ू सिंगर है वो, इनकी फैन बनूं. मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. आप भी अगर मेरी तरह कंफ्यूज्ड है बट फिर भी दिलजीत दोसांझ के फैन है तो जाइए, अभी भी थिएटर में चल रहा है, मैं वापस आऊँगा बिकॉज आई हैव पर्सनली वॉच्ड इट एंड आई लव दिस मूवी. आई मीन, अगर आंसू नहीं आए आपके आंखों से क्या कहना. अगर आपको किसी से प्यार हुआ है और अगर आप इम्तियाज अली के बहुत बड़े फैन हैं, देन डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ वॉच. आई नो, आई मीन, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ मूवीज, यू नो, दे मूव यू सो मच, दे एक्चुअली हिट द राइट कॉर्ड्स व्हेन व्हेन यू वॉच अ मूवी एंड आप पूरी तरह से घुल जाते हो उसमें. एंड दैट एग्जैक्टली अ मूवी मैं वापस आऊँगा इज. फिलहाल उसी फिल्म का एक ट्रैक सुनते मैं लाती हूँ आपके लिए. इंजॉय दिस एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो.
1: शादी कर सकते हैं.

वैसे इस फिल्म में मैं वापस आऊंगा, इस जो ये फिल्म है इसमें सिर्फ एक ही सिंगर और एक्टर नहीं है, दिलजीत दोसांझ जो है. जी हाँ, ये जो गाना है द मेल वॉइस दैट यू जस्ट हर्ड वॉज संग बाई वेदांग रायना, हु इज फीचर्ड इन द मूवी एज वेल ऑपोजिट शर्वरी बॉग. गाइज डू गिव इट अ वॉच बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, एंड इफ यू डोंट गेट मूव्ड बाय दिस मूवी तो क्या कहना. मैं तो मतलब आके बताना मुझे कैसे लगी. और अगर ऑलरेडी आपने देख चुकी है ये मूवी आपने, देन कॉल मी एंड टेल मी कैसा लगा आपको. छा गए यार, इम्तियाज अली आप वापस से छा गए. वैसे आप भी अगर आपके नेक्स्ट पार्टी में छाना चाहते हो, आई मीन छा जाना चाहते हो, देन तनिष्क प्रेजेंट्स द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज ऑफर. यू नो, यू कैन एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विथ डायमंड परचेजेस, और 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन. टर्न योर ओल्ड गोल्ड इंटू समथिंग वेरी न्यू, वेरी ब्यूटिफुल एंड quiet, timeless, only at Tanishq USA. The offer is valid till 23rd, so jaiye aur is exchange offer ke maze le lijiye. What's it? You're listening to 104.9 FM Panisha Radio. Main hoon Rumita and this is Afternoon Adda, jahan pe aapki aur meri baatein chalegi.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
10: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
10: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो.
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
18: ना सब और प्राइस
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं हीरो.
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
20: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम.

8 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. मैं हूँ रमिता. Afternoon अड्डा में आपका फिर से स्वागत है. और ये जो गाना मैंने प्ले किया था ना, ये एक्चुअली डेडिकेटेड था लियोनेल मेसी को. जी हाँ, शहर में ही तो है हमारे डालस स्टेडियम में अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच अभी भी चल रही है. और अगर आप थोड़े से खुद को अपडेट करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि सेकेंड गोल भी अर्जेंटीना का लियोनेल मेसी ने ही मारा है. तो कंग्रेचुलेशंस ऑल द अर्जेंटीना फैंस हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ. मैच तो लग रहा है पल्ला भारी अर्जेंटीना की तरफ ही है. ऑस्ट्रेलिया फैंस वालों, दिल थाम लो, क्या कर सकते हैं, मैच ही है, वर्ल्ड कप मैच इट इज. वैसे ऑफिस में अगर आपके बॉस ने आपको ये छुट्टी दे रखी है या छूट दे रखी है, मेरे मतलब है कि आप काम करते करते आप मैच भी देख सकते हो, तो कंग्रेचुलेशंस आपके मैनेजर जी हजारों साल. क्योंकि आज का दिन आप ही के शहर में जब गॉड इज प्लेइंग, आई मीन द गोट इज प्लेइंग, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लियोनेल मेसी इज प्लेइंग, तो काम पे थोड़ी ना अपना फोकस रहता है. जी तो कुछ और ही करता है कि मैच ही देख जाओ. क्यों

13 minutes past 2 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. मैं हूं रमिता and this is Afternoon Adda and this part of my show is brought to you by AG FinTechs, which was one of the most fastest growing tax firm in the USA. अगर आप अपने tax planning से परेशान हैं, अपने savings से परेशान हैं, अपने business के growth के लिए परेशान हैं, यार पैसे कहाँ invest करें, इस लिए परेशान हैं और ऐसे ही परेशान है अपने फाइनेंसेस को लेके, देन डेफिनेटली गेट इन टच विद एजी फिनटेक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अनिल ग्रंधी, जो कि है फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर, और उनकी जो ट्रस्टेड एंड एफिशिएंट टीम है दैट विल गेट यू रेडी फॉर योर फ्यूचर. सो फोन उठाओ, नंबर घुमाओ, 4699429888, that's 4699429888, or you can simply visit agfintax.com. खैर ये तो बात रही आपके फाइनेंस की. वैसे जब आप लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग कॉल करते हो हमें स्टूडियो में और बताते हो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको आज का शो, हमारे गाने, हमारे ये जो हमारा शो फ्लो होता है, ट्रांजिशंस होता है, बहुत अच्छा लगता है यार. ऐसे ही कॉल किया करो, हमें भी इनक्रेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और हमें भी पता चल रहा है कि आप लोग भी हमें सुन के कितना इन्जॉय कर रहे हो. ऐसे मतलब चुपचाप नहीं रहते, रेडियो में भी इन्वॉल्वमेंट आपका भी है. इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन दैट वी गेट, एंड ऑफकोर्स योर क्या कहूँ, आपके पसंदीदा गाने ही बजाना हमारा काम है. आपको जो पसंद आए वो प्ले करना ही हमें मोटिवेट करता है. जैसे कि थोड़ी देर पहले राधा जी ने एक कॉल किया था, मीठा सा कॉल, एंड शी जस्ट कॉल मी अप टू टेल मी, एंड दैट मेड माय डे अगेन. सो आई विश मैं ये कॉल लाइव ले पाती यार. मेरे बॉस को भी पता चलता है यार, लोग सुनते हैं हमारे शोज, कितना अच्छा बोलते हैं हमारे बारे में, है ना. तो राधा जी के लिए बहुत ही प्रेडिक्टेबल गाना. क्या हुआ अगर प्रेडिक्टेबल हो जाए, यार जिंदगी बहुत नहीं अनप्रेडिक्टेबल है, गाने प्रेडिक्टेबल हो जा लो. तो राधा जी, दिस इज फॉर यू, एंजॉय दिस सॉन्ग एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो.

21 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. Today is Monday afternoon, 22nd of June. Oho, ye kya kafiya mila diya maine. Aur aaj ki tarikh bahut hi special hai kyunki aaj match chal raha tha in the Dallas Stadium in Dallas between Argentina and Austria. Aur match khatam ho chuki hai and sabko pata hai Argentina has won the match with 2-0 है स्कोर इन फुल टाइम एंड पूरे इस टीम में सिर्फ एक ही बंदा खेल रहा था एंड दैट वाज मेसी. और अगर आज आप इंस्टाग्राम खोलोगे और अपने दोस्तों को और फ्रेंड्स को फैमिलीज को सब इंस्टाग्राम में स्टोरीज में डीपी में स्टेटस में हर जगह अगर आज के मैच के इर्द गिर्द फोटो या फिर स्टेटस अपडेट्स देखोगे आपको थोड़ा सा फोमो तो होगा ही. और आज के दिन बहुत ही डेंजरस है. इनफैक्ट इस वक्त अगर आप अपने फ्रेंड्स का स्टोरी देख रहे हो जो कि अभी डैलस स्टेडियम में बैठे हुए मेसी का लाइव मैच देख रहा था, उसे कोसो मत, श्राप मत. तो क्या करे बंदा, करेक्ट टाइम पे टिकट काट लिया है उसने, आप नहीं कर पाए. आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था मंडे मॉर्निंग मंडे आफ्टरनून में, यू कुडंट अवॉइड इट एंड इट्स ओके.

उसे कोसो मत, श्राप मत दो, क्या करे बंदा, करेक्ट टाइम पे टिकट काट लिया है उसने, आप नहीं कर पाए, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था मंडे मॉर्निंग, मंडे आफ्टरनून में, यू कुडंट अवॉइड इट एंड इट्स ओके, चिल मारो, जैसे कि आप चिल मार सकते हो अगर आप किसी भी ट्रक या कार एक्सीडेंट में फंस गए तो, या कहीं गिर गए तो, क्योंकि अटर्नी ओमर ख्वाजा आपके लिए आपका केस फाइट करेगा एंड ही विल मेक श्योर कि आपको अपना कंपेंसेशन सही से मिल जाए. यू नो, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है और यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर कि आप कंपेंसेटेड हो ठीक से. सो अंटिल यू विन द केस यू डोंट नीड टू पे अटर्नी ओमर ख्वाजा. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046 और यू कैन विजिट अटर्नी ओमर .com. Filhal back to back, do gaane only on Afternoon Adda with me, Rumita.

ऑल राइट दोस्तों, आज के आफ्टरनून अड्डे का सफर यहीं तक था। अगर आज मंडे थोड़ा हल्का लगा, ट्रैफिक थोड़ा सा छोटा लगा या ऑफिस थोड़ा सा ही बेयरेबल लगा तो मिशन अकॉम्प्लिश्ड है मेरा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, नए टॉपिक्स, नई बातें और वही अपनी दोस्ती के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, काम थोड़ा करिए और स्ट्रेस को थोड़ा सा इग्नोर करिए। दिस इज आरजे रमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। दिस इज फनीशा रेडियो एंड आप सुन रहे थे आफ्टरनून अड्डा। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द मंडे। डैलस।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Breaking news! होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
13: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
14: Excuse me. It's called being loyal.
13: It's called being predictable.
14: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
13: And what's so special at Neon Cactus?
14: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
13: Not bad.
14: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
13: Okay, this I didn't expect from you.
14: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप अपना और मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन दिस आफ्टरनून. बहुत दिनों बाद आपके साथ कनेक्ट की हूं. थैंक यू सो मच एंड आई रियली रियली मिस्ड दिस कनेक्शन. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण जो कि मंडे थ्रू फ्राइडे आपके लिए लेकर आती हूँ 2:30 बजे से 5 बजे तक. टू एवरीवन हु वाज हेयर एवरी डे फॉर यू फ्रॉम 2:30 till 5 PM हार्टफेल्ट थैंक्स टू देम जिन्होंने यहां पे आपको एंटरटेन किया. फन एशिया आपको करता है एंटरटेन्ड एज वेल एज रखता है इन्फॉर्म्ड 24/7 365 डेज अ ईयर. आज है मंडे. मंडे का दिन खास आपके लिए होता है. फिल्मी फरमाइश लेकर आती हूं और आज भी कुछ ऐसा ही है. अगले 2 घंटे लूंगी आपकी फरमाइशें. दिस इज 972 235 5555.

जी हाँ, गाने आपकी पसंद के आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे अगले 1.5-2 घंटे प्ले कर रही हूँ। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर, कॉल कर सकते हैं आप और किसी गाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरी फरमाइश ये है कि 90s से आगे के गाने रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि उनको प्ले करना आसान हो सके। बहुत सारे गाने मेरे पास लाइंड अप हैं, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, हम सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, अच्छे दिन और कभी कभी कोई मुश्किल टाइम आ जाता है, और अगर कोई इस तरह का टाइम है या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए जो आपकी तरफ से आपका केस फाइल करे, और ना सिर्फ ये बल्कि आपके लिए बेस्ट कॉम्पनसेशन की जो है इंतजाम करें। एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा। ना सिर्फ ये कि वो आपके लिए बेस्ट कॉम्पनसेशन क्रिएट करेंगे, बल्कि इनफैक्ट फाइट करेंगे आपके लिए, बल्कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग जब तक कि आप वो केस जीत नहीं जाते। सो इट इज एन एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन फॉर यू। अगर आप किसी ऐसी सिनेरियो से गुजर रहे हैं या समवन यू नो यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, देन द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव देम राइट नाउ इज द नंबर ऑफ अटर्नी उमर ख्वाजा। दैट नंबर इज 469-300-5046 is the number, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए which is attorneyumar.com। This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण। पसंद आपकी फिल्मी फरमाइश आपके लिए लेकर आई हूँ।

आयुष्मान खुराना की डेब्यू मूवी विकी डोनर से सुन रहे थे आप ये गाना. और ना सिर्फ आयुष्मान खुराना बल्कि मेरे ख्याल यामी गौतम की भी ये डेब्यू मूवी थी. और बिफोर लैंडिंग द रोल आयुष्मान टर्न डाउन 6 अदर फिल्म स्क्रिप्ट्स. तो ये छठी सातवीं फिल्म उनके पास आई थी जिसके लिए उन्होंने फाइनली हाँ कर दी. लेकिन आयुष्मान कोई नया चेहरा नहीं थे मेरे और आपके लिए, क्योंकि उससे पहले वो एक बहुत पॉपुलर होस्ट थे, टीवी शोज होस्ट करते थे और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करते थे. He was a very popular host, and then it was an absolute delight watching him in movies. He has established a very big name for himself. बहुत सारे गाने आपके लिए आपके इस सेगमेंट यानी कि फिल्मी फरमाइश में मंडे खास आपको डेडिकेटेड होता है. आप ही की पसंद के गाने चलाए जाते हैं. अनिल, this one is going out to you.

अगर आपका कोई सवाल है अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं आप, या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो माई टाइम इक्विटी लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, दे कैन हेल्प यू इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू ऑल दीज थिंग्स. वेदर यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी कि लंबा आपको कोई यू नो इन्वेस्टमेंट करनी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं आप, या फिर यू आर इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट, माई टाइम इक्विटी ऑफर करते हैं पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस जो कि आपके गोल्स के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं. तो बिल्कुल मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को. यू हैव एनी क्वेश्चन, गिव देम अ कॉल. दैट नंबर इज 4697021272, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज mytimeequity.com. एंड बिफोर आई पुट ऑन द नेक्स्ट सॉन्ग, आई मस्ट टेल यू द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन दीज लाइव अनाउंसमेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यूज दैट वी डू हियर ऑन द शो आर पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड डज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंट द ऑफिशियल आइडियाज ऑफ द रेडियो station nor the RJ.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM, turn up the volume.
3: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
4: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
5: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
6: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
10: इट्स लॉसन।
9: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
10: इट्स लॉसन।
9: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
11: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 2146312458, The Travel Experts, Lawson Travel।
12: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
14: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
15: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
14: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
13: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
16: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
17: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में? सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
19: डालस की धड़कन
10: 104.9 FM, Funisia Radio.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. और जी आज चल रहा है फिल्मी फरमाइश. अराउंड 4:30 बजे तक आपकी फरमाइशें लूंगी. मंडेज इज डेडिकेटेड टू योर रिक्वेस्ट. और उसके बाद आप जानते हैं ट्यूजडेज वेंसडेज थर्सडेज फ्राइडे हर रोज ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में आपको मिलता है एक नया फ्लेवर. टुमोरो टूडे इट इज फिल्मी फरमाइश. कल लेके आऊंगी आपके लिए वो जो हम करते हैं ब्लॉक बस्टर स्पॉटलाइट. हाँ, बॉलीवुड स्पॉटलाइट, जिसमें हम स्पॉटलाइट डालते हैं कुछ ऐसे सितारों पे जिन्होंने अपने काम से और अपने गानों से हमें महसूस किया. वी एब्सोल्युटली लव लिसनिंग एंड वॉचिंग देम. और उसके बाद वेंसडेज को आपके लिए आता है ब्लॉग ये पॉप फ्रीक्वेंसी. पॉप फ्रीक्वेंसी में करते हैं कुछ पाकिस्तानी गाने प्ले. और फिर लेके आती हूँ आपके लिए द टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामाज जो कि ट्रेंड करे हैं लास्ट वीक. थर्सडेज इज डेडिकेटेड टू वो 90s का बॉलीवुड, जबकि फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इज डेडिकेटेड टू फूड जंक्शन, जहां लेके जाती हूँ आपको दुनिया के अलग अलग शहरों में और करते हैं उनके बारे में खाने पीने की बात कि वहां एज अ टूरिस्ट जब हम जाएं तो हमें क्या खाना चाहिए, उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं एज वेल एज उनके देसी फेवरेट्स क्या हैं. फ्राइडे इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू किड्स. जी, किड्स जंक्शन लेकर आती हूं फ्राइडेज को. बच्चा पार्टी आप सबके लिए स्पेशली फ्राइडेज इज डेडिकेटेड. 3 to 4:30 PM वी प्ले योर फेवरेट म्यूजिक, योर रिकमेंडेड म्यूजिक. और इसी तरह गुजर जाता है पूरा हफ्ता. आप मेरे साथ बने रहिए. 9722355555 इज द नंबर to the studio.

पिछले 13 सालों से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, X-rays, CT scans, cardiac diagnostic and Himalayan med spa services, सब कुछ under one roof. तो अब आपको बिल्कुल ये परेशानी नहीं है कि ब्लड टेस्ट कराने कहीं और जाना है या cardiac diagnostic कराने कहीं और जाना है या CT scan के लिए कहीं और जाना पड़ेगा. सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिल रहा है at लिनॉक्सी Medical. Open 7 days a week from 8 AM till 8 PM. So 8 से 8 बजे तक आपके लिए खुले हैं जी. वॉक इन एनी टाइम, अपॉइंटमेंट्स भी जरूरी नहीं है. दिस इज लिनॉक्सी मेडिकल. डू कनेक्ट विद देम एंड मेक देम योर नेक्स्ट प्राइमरी केयर. सफी, दिस इज गोइंग आउट टू यू.

जी हाँ, सफी की रिक्वेस्ट पे ये गाना आप सुन रहे थे। ले रही हूँ फिल्मी फरमाइशें आपके लिए, चल रहा है आपके पसंद के गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, अराउंड 4:15 बजे तक लेकर आऊंगी। और आगे बढ़ते हुए अगला गाना, एक बहुत ही खूबसूरत गाना रिक्वेस्ट किया है आंचल ने, और आंचल आपकी पसंद का ये गाना। लेकिन उससे पहले आपको बताएं जी, वो कहते हैं ना भूख लगी तो भूख लगी का सलूशन देने लगी हूँ आपको। तंदूरी फ्लेम अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया तो गार्लैंड में लोकेटेड है जी, आपके लिए। वो कहते हैं ना तमाम स्पाइस लवर्स के लिए दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस टू गो। अगर आज आपका खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, या कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं दिल करे, या एकदम से घर में मेहमान आ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, लेकिन खाना भी आपको घर जैसा ही परोसना है, तो फिर तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। घर जैसा जायका मिलेगा आपको तंदूरी फ्लेम पे, सो जरूर विजिट कीजिए। गार्लैंड में लोकेटेड हैं और जबरदस्त नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपके तमाम, जैसे कि स्मोकी तंदूरी कबाब्स, वेलवेटी करीज, फ्रेश हॉट नान्स और भी बहुत कुछ अवेलेबल है तंदूरी फ्लेम्स लोकेटेड इन गार्लैंड। आंचल, दिस इज फॉर यू।

अच्छा जी, काफी सारे जो है हमारे पास गोल्ड होता है और हम सोचते रहते हैं कि इसके साथ क्या करना है. तो तनिष्क ज्वेलर्स जो हैं, दे आर नाउ प्रेजेंटिंग यू द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. बिल्कुल सही सुना आपने, एक्सचेंज कर सकते हैं आप अपना

काफी सारे जो है हमारे पास गोल्ड होता है और हम सोचते रहते हैं कि इसके साथ क्या करना है. तो तनिष्क ज्वेलर्स जो हैं, दे आर नाउ प्रेजेंटिंग यू द फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. बिल्कुल सही सुना आपने, एक्सचेंज कर सकते हैं आप अपना पुराना सोना एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज्ड गोल्ड विद डायमंड परचेज. तो डायमंड भी खरीदिए अपना सोना एक्सचेंज करके और $5 पर ग्राम आपको मिलेगा ऑन एक्सचेंजेस ऑफ गोल्ड विद डायमंड परचेजेस. तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर तनिष्क ज्वेलर्स की तरफ से आई है. और साथ ही साथ आपको बताएं, 9 कैरेट से ऊपर के गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन उन्होंने ऐड की है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टर्न योर ओल्ड गोल्ड इनटू समथिंग न्यू, समथिंग ब्यूटीफुल. और सोना तो होता ही टाइमलेस है, उसके बारे में क्या कहना. दिस इज ओनली एट तनिष्क यूएसए. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. सो जरूर विजिट कीजिए तनिष्क ज्वेलर्स.

0: इश्क ज़ादे फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना, और इश्क ज़ादे फिल्म जो है वो अर्जुन कपूर का डेब्यू मार्क करती है। ही वॉज इनिशियली सपोज टू एक्ट इन अ फिल्म कॉल्ड वायरस दीवान विच वॉज शेल्फ्ड, और फिर उसके बाद उन्होंने ये इश्क ज़ादे साइन की। एंड इट वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज दैट वर रिलीज दैट ईयर। परिणीति चोपड़ा को नेशनल रिकग्निशन मिला। शी वन अ स्पेशल मैंशन एट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हर फायरी पोट्रेट ऑफ जोया कुरैशी। और ये फिल्म बनी उनकी उन चंद एक फिल्मों में से परिणीति की जिनके लिए परिणीति को जिस फिल्म के लिए परिणीति को याद रखा जाता है। परिणीति और अर्जुन ने डेवलप किया एक बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप इस मूवी के दौरान, और इस बॉन्ड के चलते इंडस्ट्री में उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स का नाम दिया जाने लगा। ये वो बात है जब इश्क ज़ादे रिलीज हुई थी 2012 में। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, आई स्टिल हैव अबाउट 45 मिनट्स ऑफ फिल्मी फरमाइश लाइंड अप फॉर यू। आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे। बने रहिए मेरे साथ। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। होप यू आर हैविंग अ लवली आफ्टरनून।
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route. Rerouting.
3: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: Kyun?
4: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: Achha, to seedha wahi le chalo.
5: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
4: Your new destination has arrived.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
11: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
13: मामू देखो क्या हो गया।
14: ओ क्या हो गया?
13: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
14: ओए जर्मन का कमाल है।
13: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
14: ओ नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
15: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
16: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
17: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
18: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
19: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी। One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
20: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
21: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
22: Documents ya parcel bhejni hai?
23: Haan.
22: Ghar relocate karni hai?
23: Haan.
22: Gaadi bhi transport karna hai?
23: Haan, bhai, haan.
22: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
24: Documents shipping, boxes shipping. Complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide. Har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.

0: 104.9 FM फनीजर रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण लेकर हर रोज मंडे टू फ्राइडे 2:30 से 5 बजे तक हाजिर रहती हूं. आप भी मेरे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू. एवरी डे अ न्यू फ्लेवर, कुछ डिफरेंट लेकर आती हूं. आज का दिन तो टोटली आपको डेडिकेटेड होता है जी. आपके गाने पसंद, आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे मैं आपके लिए प्ले करती हूं. सो अभी मैं कॉल्स ले रही हूं आपकी. आप कॉल करना चाहते हैं, कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई एम ऑल ears. और इट इज टाइम नाउ फॉर मी टू ब्रिंग यू कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय रेड हॉट चिली पेपर. जी हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न, इन दोनों में से कोई एक चीज आप जीत सकते हैं. या फिर डालस बेस्ट बटर चिकन, ये है जी रेड हॉट चिली पेपर का चिकन मक्खन वाला, इनमें से भी कोई चीज आप जीत सकते हैं. मतलब ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, और इनमें से जो भी आप जीत गए तो इनमें से कोई एक चीज आप पिक कर सकते हैं. यू कैन पिक अप द गिव अवे फ्रॉम लोकेशन, कहां पे है जी ये, रिचर्डसन, मिकिनी या फिर एलन. रेड हॉट चिली पेपर आपके लिए बहुत सारी जगहों पे ऑपरेट करता है. फ्रिस्को पे प्लीज नोट के दे कैन नॉट, यू कैन नॉट अवेल दिस गिव अवे एट फ्रिस्को लोकेशन. सो रिचर्डसन, मिकिनी या एलन लोकेशन पे अगर आप जा सकते हैं और इस गिव अवे को पिक कर सकते हैं, अपना मतलब यू नो अवेल कर सकते हैं, तो जरूर कॉल कीजिए. और आप जो है कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में, आप चूंकि पसंद आपकी चल रही है, आपके मनपसंद गाने चल रहे हैं, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं आपको कौन सा ऐसा गाना है जो इस वक्त याद आ रहा है, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए प्ले किया जाए. या वो कहते हैं ना, कुछ कई बार कुछ गाने हमारे जहन में गुनगुना रहे होते हैं, ऐसे अटक से जाते हैं, तो कोई गाना है जो आपके जहन में अटका हुआ है, 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मुझे कॉल कीजिए और बताइए वो कौन सा गाना है जो इस वक्त आपके जहन में है अटका हुआ, और जीत लीजिए ये मौका ऑफ विनिंग दिस रेड हॉट चिली पेपर्स गिव अवे. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
1: हेलो, हम अभी आपका प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत अच्छा है.
0: थैंक यू.
1: अच्छा लग रहा है.
0: कौन बात कर रही है?
1: आयशा
0: जी. आयशा बताइए, क्या ऐसा गाना है जो भी आपको यू नो अटक गया है जहन में या याद आ रहा है?
1: अच्छा, मुझे वो गजल पंकज दास की गजल है, चांदी जैसा मन है तेरा, सोने जैसे बाज.
0: बिल्कुल सही.
1: गुजरे वो
0: एक तू ही, वो एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब
1: हाँ, हाँ,
0: राइट
1: हाँ,
0: ठीक है, ठीक है. आयशा, थैंक यू सो मच, आपने अपना पसंद का गाना हमारे साथ शेयर किया. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
2: ठीक है, आयशा, थैंक यू.
0: नाम बताइए, रेडियो की आवाज कम कर लीजिए.
2: हेलो
0: जी, व्हाट इज योर नेम?
3: दिस इज रूपा.
0: हाय रूपा, बताइए व्हाट इज दैट वन सॉन्ग जो अभी दिमाग में चल रहा है आपके?
3: सैयारा मूवी, सैयारा तू बदला नहीं है.
0: अच्छा ठीक है, सैयारा से सैयारा याद आ गया आपको, बिल्कुल सही. ओके रूपा, सुनते जी, सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. और अभी बताती हूँ मैं, बहुत शुक्रिया. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
4: हेलो, माय नेम इज मलिक.
0: जी मलिक साहब, बताइए व्हाट सॉन्ग इज गोइंग ऑन इन योर हेड राइट नाउ?
4: इन माय हेड आई हैव अ वन सॉन्ग, आई थिंक इज अ गोविंदाज मूवी, एंड द दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से.
0: जी जी जी, बिल्कुल आपके आ जाने से, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच मलिक साहब, सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनीशर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम?
5: माय नेम इज फयाज.
0: जी फयाज साहब, बताइए
5: जी सॉन्ग बताना है, राइट?
0: जी जी, मतलब आपके जहन में क्या चल रहा है?
5: जी वो चल रहा है, पापा कहते हैं मेरा नाम करेगा कल से, फादर्स डे की वजह से.
0: अच्छा, किसकी वजह से चल रहा है ये गाना आपके जहन में?
5: फादर्स डे की वजह से, कल जो फादर्स डे था ना, तो
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली विशिंग यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. और जी, हम ले रहे हैं एक छोटा सा गाने की ब्रेक, जब हम उससे वापस आएंगे तो मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूंगी टू आस्क यू कि आपके जहन में क्या चल रहा है.

0: फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: बीना.
0: बीना जी, बीना बताइए, व्हाट सॉन्ग इज गोइंग ऑन इन योर हेड राइट नाउ?
1: पुराने मनोज कुमार का पुरवा सुहानी आई रे, पुरवा सुहानी आई रे.
0: अच्छा, फिर रात सुहानी आई, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच बीना. ओके, लवली, थैंक यू सो मच. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. जी हाँ, सुन रहे हैं आप, ये गिव अवे चल रहा है आपके लिए रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय रेड हॉट चिली पेपर. ड्राई चिकन चिली, चिली बेबी कॉर्न, डालस बेस्ट बटर चिकन या फिर चिकन मक्खन वाला, इनमें से कोई एक चीज आप जीत सकते हैं और अवेल कर सकते हैं रेड हॉट चिली पेपर की रिचर्डसन, मिकनी या फिर एलन की ब्रांच पे. आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर कोई कॉल अभी हो गई तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन उसके बाद जब हम गाना प्ले करेंगे तो फिर मैं विनर अनाउंस करूंगी. सो आई हैव अ फ्यू कॉल्स लाइंड अप, विनर अनाउंस करूंगी. आप मुझे सुनते रहिए, क्योंकि आपने मुझे कॉल बैक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है जो हम जाएंगे रेड हॉट चिली पेपर रेस्टोरेंट पे. 9722355555 इज द नंबर टू दिस स्टूडियो. सवाल बहुत सीधा था, बात बड़ी सीधी थी कि क्योंकि आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं तो आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में है. वो जो कहते हैं ना, कई बार जबान गुनगुनाती है, कई बार दिल और दिमाग गुनगुनाते हैं. सो आपका दिल या आपका दिमाग क्या गुनगुना रहा है?

0: Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: आमिना
0: जी. आमिना बताइए.
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कुल.
0: तेरा मुझसे है पहले का. ठीक है जी, बिल्कुल सही. थैंक यू आमिना फॉर योर कॉल. स्टे ट्यून्ड. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. फनीशा. ओके ओके. फनीशा रेडियो, यू आर लाइव इन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज अरुण.
0: जी अरुण, बताइए.
2: हाँ जी, आर यू स्टिल टेकिंग दैट सॉन्ग लाइक द वन दैट अटका फ्राइडे और दिमाग?
0: जी जी जी. आपका जहन क्या गुनगुना रहा है ये बताइए.
2: आपका वो जो अटकना वाला वर्ड था, इट्स लाइक मैंने काफी टाइम बाद सुना, तो जैसे ही सुना तो द सॉन्ग दैट गेट्स अटको फाइव डेज तुम पे हम है अटके यारा.
0: दिल भी मारे झटके. बिल्कुल सही है.
2: एग्जैक्टली.
0: बिल्कुल सही जी. आप जबरदस्त अरुण, सुनते रहिए. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ, बल्कि आप होल्ड कीजिए. जबरदस्त गाना हमें अरुण ने याद दिलाया है. आज के हमारे लकी विनर हैं अरुण. अरुण आप होल्ड कीजिए, मैं अभी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेती हूँ. गिव मी अबाउट 10 सेकंड्स.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेशिया रेडियो।

जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. आपने बहुत अमेजिंग पार्टिसिपेशन आप सब करते हैं ऑन दिस यू नो, जो सुनहरी किरण पे आपके लिए लेकर आती हूँ मैं कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. बहुत अरसे से हम कर रहे हैं ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर एंड इट इज़ यू जिसके साथ करते हैं हम ये छोटी छोटी बातें. थैंक यू सो मच. और अब इस अगले गाने के साथ मैं लेके जा रही हूँ आपको ब्रेक की तरफ. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और गिव अवे नहीं जीत पाए, नो वरीज एट ऑल, आई हैव another giveaway lined up for you. So सुनते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और you might just be the lucky winner in the next giveaway. This is Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. Thank you so much for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi Trusted Care, Urgent Care Services के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today. Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं।
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं।
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं।
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
8: AG Fintechs led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
18: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
19: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
18: कैसे?
19: पेज 3 ईटरी?
18: No, not another restaurant again.
19: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
18: मतलब great food, great drinks and great company. यानी कि मैं
20: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
21: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
22: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
23: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

फाइनेंशियल रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ और एज प्रॉमिस्ड लेके आई हूं आपके लिए एक और गिव अवे आया है आपके लिए इंडिया बाजार की तरफ से, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है. जी, तो ये मौका है आपके पास जीतने का एक स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर इफ यू आर इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट या फिर हैजलेट. तो ये गिव अवे है 100% आपके लिए. फोर्ट वर्थ आपको जाना होगा, तो याद रखिए यू कैन ओनली बी अ विनर इफ यू आर यू नो गोइंग टू गो टू फोर्ट वर्थ. या आपका चक्कर लग रहा है तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए. और इंडिया बाजार के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिस इज ऑफ कोर्स योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरी, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, मतलब ऑल डे देसी एसेंशियल्स जो आपके होते हैं घर के, वो तमाम आपको इंडिया बाजार से एक ही छत के नीचे से मिल जाते हैं. और फोर्ट वर्थ की ये लोकेशन जो है आपके लिए ऑपरेट कर रही है अब, और आपको मुझे कॉल करके बताना है कि इस लोकेशन का पूरा एड्रेस क्या है और जीत लीजिए ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ. अगर आप जीत गए तो आपको इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ जाना होगा और अपना ये गिफ्ट हैम्पर अवेल करना होगा या कलेक्ट करना होगा. वंस अगेन 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर. कॉल कीजिए और मुझे बताइए इंडिया बाजार जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है उसका फुल स्ट्रीट एड्रेस क्या है.

गिव अवे आया था आपके लिए इंडिया बाजार की तरफ से, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है. मैंने आपसे पूछा था कि मुझे एड्रेस बता दीजिए इंडिया बाजार का, और सबसे पहले तो आपको सही जवाब दे दें. द करेक्ट आंसर इज 5152 क्वाड्रेंट वे, स्वीट 110, फोर्ट वर्थ, टेक्सिस 76137. ये है जी कंप्लीट एड्रेस इंडिया बाजार, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है. और आपके लिए लेकर आए थे एक स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. इंद्रप्रीत, माधवी, संदेश, बिंदिया, और अभी भी फोन कॉल्स हो रही हैं, मगर हमारा गाना खत्म हो गया है. और आज के जो हमारे लकी, मैं हमेशा आपको कहती हूँ एक मैथ के फॉर्मूले में जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है वो नंबर डलता है, और उसके बाद आपकी लकी आपकी विन का फैसला लेती है. और आज की जो हमारी लकी विनर है वो है जी संदेश घोषाल. संदेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये ग्रोसरी हैम्पर ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार. हमें 2 दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ एंड कलेक्ट योर स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का. आपके लिए इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज फनेशिया लेकर आता है, बहुत शो में ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. इट इज एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज ऑलवेज टू हैव यू कॉल अस एंड पार्टिसिपेट. थैंक यू.

गानों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी है, बट फॉर द नेक्स्ट 9 मिनट्स, क्योंकि आज है जी मंडे. आपको याद दिलाती चलूं कि मंडे को 4:30 to 5 PM हमारे साथ कनेक्ट करते हैं संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेस. आपका कोई भी सवाल हो, सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल इंजरी या फिर फैमिली या इमिग्रेशन लॉ को लेकर, तो वो तमाम सवाल आपके लाइव लेंगे संजय माथुर जी. हियर यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग हिम अ कॉल, आस्किंग योर क्वेश्चन एंड ही विल answer your questions live right here on Fun Asia Radio. So 4:30 के बाद से 5 बजे तक संजय जी हमारे साथ कनेक्टेड होंगे. आप फोन कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं. एक बार आपको बताती चलूं कि अगर मैं आपको होल्ड पे डालती हूं और आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही है कि ही इज answering some other question or he is talking, that means you are next online to ask your question. Line drop मत कीजिएगा, थोड़ा इंतजार अगर आपको करना पड़े तो कर लीजिएगा, लेकिन line हरगिज़ drop मत कीजिएगा.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maino chahu.
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
5: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
4: सच में, एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
5: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
4: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
5: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
4: नंबर बोल जल्दी।
5: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
6: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
10: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
11: प्लीज डोंट सी योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
12: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
11: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
12: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: It's Lawson.
13: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
14: It's Lawson.
13: Daddy, what is the law?
15: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
16: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
17: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
16: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
18: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI
10: AI-powered platform real-time rates compare करता है ताकि आपको मिले better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, हजारों families का भरोसा. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

Of course, I want to thank the Almighty for yet another day, yet another evening, जहाँ पे मैं आपके साथ आके कुछ बातें करूंगा जी, अपनी कुछ आपकी सुनूंगा, एंड इसी तरह हम इस दो घंटे को बड़े प्यार से काटेंगे जी. Some of your favorite songs are going to be lined up as well, and if you have a birthday, anniversary या कोई भी खुशी की बात आज आपकी लाइफ में which you're celebrating, I promise मैं केक नहीं खाऊंगा और बस आपकी खुशी में शामिल हो जाऊंगा, एंड विल डबल अप दैट हैप्पीनेस एंड जॉय. एंड ऑफ कोर्स स्टूडियो की लाइन आपके लिए हमेशा खुली है जी, 972-235-5555 इज द नंबर, एंड लेट्स टेक यू टू द पहला गाना ऑफ दिस आफ्टरनून. जहां नए गानों की बारिश होए जा रही है, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं आज, नए भी चलेंगे, बट सम ऑफ द ओल्ड वंस दैट वी चेरिश, हियर वी गो.

Taken from the movie Khaki, this was Sonu Nigam and Shreya Ghoshal coming together with the picturization में Aishwarya Rai and Akshay Kumar. Wonderful movie. If you haven't seen the movie, go check it out. Khaki बहुत ही अच्छी फिल्म थी and different movie for its time. इसमें जो स्टार कास्ट थी वो भी बड़ी गजब की थी जी. Good acting. अमिताभ बच्चन साहब थे इसमें and many other actors. You got to check it out if you haven't. And वो आ गया यार वापस फिर से. Season 2 आ चुका है उनका. समय रहना. After all the FIRs, 3 FIR, साइबर सेल के यू नो डरावे, बट द शो इज़ बैक. इट्स ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एक डील क्रैक करी है नेटफ्लिक्स ने, जो कि ऐसा कभी करती नहीं. बट समय रैना के लिए एक एक्सेप्शन बनी है दैट हिज शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन यूट्यूब पैरेलली वाइल इट्स ऑल्सो बींग टेलीकास्टेड ऑन नेटफ्लिक्स. एंड नेटफ्लिक्स हैज अपेरेंटली नेवर डन दिस इन देयर लाइफ. कोई बात नहीं भैया, हम देसी हैं ना, हम सारे रूल तोड़ देते हैं भैया, एवरीथिंग की गेम बदल ही देते हैं. कुछ लड़के बात कर रहे थे हरियाणा के गांव में, बोल रहा था यार मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, शी वॉज अ गोल्ड डिगर. पीछे से ताऊ बोला ले ये सोना खोदने वाली को काय को छोड़ दिया तने.

0: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स। अभी तक टैक्सेस आपने नहीं किए हैं, बैक टैक्सेस आपको तंग कर रहे हैं, सैम अंकल आपके पीछे लगे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि आपके पास है जी एजी फिनटैक्स, दे विल टेक केयर ऑफ यू। एजी ओजी लोजी सुनोजी करता है जो एजी, बिल्कुल बढ़िया करता है आपके लिए। मेक श्योर टू गेट इन टच विद देम ऑन द वेबसाइट व्हिच इज agfintax.com, एंड इफ यू लुकिंग फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग दे डू दैट एज वेल। आपको पता दाल में सही तड़का, पहले तो बता दूं मैं चंडीगढ़ से हूं, दाल में सही तड़का और चंडीगढ़ का लड़का किस्मत वालों को मिलता है।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं ही तो।
10: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ।
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ।
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ।
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
14: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
13: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
5: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline. We got

0: देखो, अक्सर बीवियां हम पे शक करती हैं, और ठीक है यार, उनका हक है शक करना, पर जैसे जैसे उम्र हो जाती है ना, वो शक करना कम होता रहता है, कम होता रहता है। तो अगर आज भी आपकी बीवी आप पे शक करती है ना, तो गुस्सा मत किया करो, ये तो खुश होने की बात है। उसको आज भी डर लगता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब आपकी फिटनेस, आपकी पर्सनालिटी चीख चीख कर कह रही होती है कि बंदे में अभी भी दम है।
1: रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास।
0: पर हाँ, जब वो ऐसी कोई बात करे ना, तो ऐसे नहीं करना, हाँ हाँ ठीक है, चित्र पड़ी है, आपने ड्रामा वही करना है कि नहीं नहीं मैं भी समझ गया ना। पांच बज के 25 मिनट हो चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में मैं रहूंगा जी आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock, जून की 22 तारीख। और 22 तारीख ऐसी तारीख है कि ऐसी कोई तारीख ही नहीं है, तारीख पे तारीख जितनी मर्जी आती रहे। 22 तारीख अप्रैल की जो स्पेशली है ना, जबरदस्त तारीख है, उसके अलावा बाकी सब पानी कम। ऑल राइट, ये जो ग्रह है हमारे, यही सारा गड़बड़ करते हैं ना। अक्सर लोग कहते हैं कि दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्लैनेटरी एक्शंस। तो यार मुझे एक बात बताओ, ये ग्रहों के पास इतनी जगह है घूमने के लिए अंतरिक्ष में, है जी, इनको घूम फिर के हमारी कुंडलियों में क्यों बजना होता है? सैम, दिस वन्स फॉर यू।

0: PMJ Jewelers is now open in Frisco. उसके बारे में बताऊंगा आपको right after the next commercial break. And on the other side, I have a giveaway coming up from Panj Tara, जो कि आपको खिलाएंगे जी छोले भटूरे या फिर उनका आलू कुलचा. अच्छा जी, आज ना उस गोरे का जन्मदिन है जो हिंदी बोलता था और फिल्मों में काम करता था. उनका नाम था टॉम ऑल्टर, थॉमस बीच ऑल्टर उनका नाम है. 22nd of June आज के दिन जन्म हुआ था 1950 में, and he passed away on 29th of September 2017. बहुत सारा काम किया उन्होंने फिल्मों में एंड इवन इन मेनी टीवी सीरियल्स. साहिब बहादुर वॉज द फर्स्ट वन इन 1977. उसके बाद देश प्रदेश, राम भरोसे, हम किसी से कम नहीं, परवरिश एंड मेनी मेनी मोर. रिमेम्बरिंग हिम हु वॉज द गोरा बट येट नॉट गोरा येट इंडियन. एक ब्रेक के बाद आया.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: इट्स लॉसन.
4: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
5: इट्स लॉसन.
4: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
6: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 2146312458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
9: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
11: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 टू 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om. Fly, fly, fly, fly.

शादी से पहले अक्सर कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, अब कहते हैं थोड़ा उधर हो यार, गर्मी बड़ी है। इस 5:46 द स्टूडियो क्लॉक 5:46 हो चुके हैं जी, शाम का टाइम हो चुका है। मतलब शाम का ये मत समझ लेना कि शाम का टाइम हो गया तो आप वो कर सकते हो, खैर आपकी मर्जी है, करना है तो आपको करो। चाय वगैरह की बात कर रहा हूँ यार, इस टाइम चाय वगैरह पीते ना लोग शाम को, तो वो आप चाय वगैरह देख लो, बिस्किट के साथ खानी है या मैरी गोल्ड या पार्ले जी का अपना मजा है। अगर गिर गिरा गया कप में तो चम्मच हैंडी रख लीजिएगा। खैर मैं तो गाने लगाने आया हूँ जी आपके लिए, बढ़िया से बढ़िया। और आज थोड़ा सा मैंने बोला था कि मैं मिक्स चलाऊंगा, थोड़ा नया, थोड़ा सा ओल्ड एंड थोड़ा सा, मतलब इतना ओल्ड भी नहीं बट ओल्ड इनफ टू इन्जॉय। एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मेरा नाम करेगा रोशन, पर ये ना थोड़ा सा मेरा काम इस शाम का ख़राब हो जाएगा जनाब। पर मैं कुछ और ओल्ड गाना ज़रूर लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए आप बने रहे मेरे साथ। एक अच्छा सा प्यारा सा क्लासिक गाना ढूंढ के आपको मैं ज़रूर चलाऊंगा जी। मुझे एक सवाल है आपसे के, चलो बताता हूँ इस गाने के बाद। और इस सवाल के साथ जो मैं बताऊंगा उसके साथ मिलेगा जी आपको गिव अवे, विच इज़ फ्रॉम पंज तारा रेस्टोरेंट एंड दे आर इन एलन नाउ, नई लोकेशन खुल चुकी है। एंड उस लोकेशन पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जी एक छोले भटूरे या फिर उनका आलू कुलचा। कैसे जीतना है, गाना तो सुनो पहले।

0: दिस सॉन्ग एंड दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय अटर्नी ओमर ख्वाजा। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी आप एक्सीडेंट या इस ट्रबल में ना पड़े, बट अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, यू आर हिट बाय अ कार और 18 व्हीलर, आपको एक नाम याद रखना है। देखें, एट दैट टाइम आई डोंट वॉन्ट यू टू पैनिक, सो एक नाम याद रखेंगे तो ईजी हो जाएगा सब कुछ। लाइक आई सेड, इट नेवर हैपन्स टू यू, बट इफ इट डज, एक नाम है जी अटर्नी ओमर, इसको आप याद कर लीजिए। एंड अटर्नी ओमर डॉट कॉम इज द वेबसाइट, बड़ा सिंपल सा वेबसाइट है, एंड दैट वेबसाइट विल गेट यू ऑल दैट यू नीड एट दैट वेरी मोमेंट। चाहे आपको डॉक्टर चाहिए, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, आपको उसके एक्सपेंसिस कराने, आपको अटर्नी की हेल्प चाहिए, ऑफकोर्स पहले 911 कॉल करेंगे, बट उसके बाद का जो प्रोसेस है, जिसमें आपको अगर जॉब लॉस हो रहा है उसके पैसे कहाँ से आएंगे, इफ योर कार इज ब्रोकन डाउन वो कैसे ठीक होगी, और जो कॉम्पनसेशन आप डिजर्व करते हैं राइटली वो आपको कैसे मिलेगी। सो जस्ट रिमेंबर द नेम अटर्नी ओमर, और ओमर ख्वाजा इनका नाम है, एंड ही वर्क्स वेरी, मैं कहूँगा बड़े दिल से काम करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ हिज विंस आर, मेजॉरिटी ऑफ हिज केसेस आर सक्सेसफुल, 99% ऑफ देम आर सक्सेसफुल, एंड इफ यू डोंट विन यू डोंट पे एनीथिंग, तो यू नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। इस फिल्म को लगाने, गाने का खाने का पीने का नहीं, इस गाना लगाने की एक वजह थी, वो ये थी कि दिस इज टेकन फ्रॉम चाइना गेट, और चाइना गेट में एक एक्टर थे जिनका आज के दिन होता है जी जन्मदिन, बॉर्न ऑन द 22nd of June 1932, ही पास्ड अवे ऑन द 12th of January 2005। इंडियन एक्टर जिन्होंने बहुत काम किया हिंदी सिनेमा में, 450 से भी ज्यादा फिल्में, एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइकॉनिक एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। इनकी आवाज इतनी डिफरेंट थी कि बस वो आवाज ही काफी थी इनकी पहचान बनने के लिए। हिज एक्टिंग वर्सिटिलिटी बट हिज विलेनियस रोल्स अर्नड हिम मोर रिकग्निशन। ऑफकोर्स एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे, बट विलन का रोल जो है वो डोमिनेंट रहा इनकी इंडस्ट्री में। हिज डोमिनेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस एंड डिस्टिंक्टली डीप वॉइस मेड हिम स्टैंड आउट अमंगस्ट अदर एक्टर्स ऑफ दैट जनरेशन। मैं आपको सुनवाता हूं उनका डायलॉग, क्यों, जो सबसे एपिक था, उसके बाद एक और।
1: मोगेम्बो, खुश हो
2: मोगेम्बो, खुश हुआ।
0: और बाय गॉड, जब ये खुश हुआ ना, तो वो फील हुआ कि मोगेम्बो खुश हुआ।
3: अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई।
0: लो जी, इसके बाद आता है एक और, वो कैसे छोड़ दूं ना, तो ये लो, ये वाला भी बड़ा जबरदस्त।
4: शाबाश मेरे शेर, आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है। आज जब शाम जवान होगी तो शबाब मौसीकी पे नाचेगा, जश्न का इंतजाम करो।
0: I am talking about none other than Mr. Amrish Puri, जिनका आज के दिन होता है जन्मदिन, remembering him on his birthday. Of course, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, but some of the roles were very iconic, जैसे कि विधाता 1982, उसके बाद Mr. India in 1987 with Mogembo, खुश हुआ, शहनशाह, राम लखन, त्रिदेव, घायल, सौदागर, करण अर्जुन, दामिनी, जीत, कोयला, which was another one, जिसमें आंखें खोल के सो जाते थे अमरीश पुरी साहब, but what a wonderful actor, पंजाब का पुत्र जी, शेर पंजाब में जन्म हुआ था इनका, इन द ईयर 1932, एंड व्हाट अ वंडरफुल यू नो टाइम ही इज गिवन ऑल ऑफ अस, चाहे हम बच्चे थे या बड़े हुए हैं तब भी, आई थिंक वी ऑल ग्रू अप वॉचिंग अमरीश पुरी साहब, एंड व्हाट अ वंडरफुल एक्टर इंडीड ही वॉज। इसके साथ मैं लेता हूँ जी कॉलर, और गुड इवनिंग फनीजा।
5: Yeah,
0: it is Amrish Puri. It is Amrish Puri, sir, पर इसके पे तो गिव अवे था ही नहीं, गिव अवे तो अब आना है आपके लिए, राइट आफ्टर इस बात के बाद आ रहा है जी, सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर मी। लाइक आई सेड कि 5 तारा का गिव अवे है, पहले तो अमरीश पुरी साहब, हेवनली हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द टीम ऑफ फनेजिया एंड फ्रॉम मंदा मिंदास, एंड अब मैं चल रहा हूँ जी गिव अवे की तरफ। गिव अवे क्या है जी, वो है 5 तारा एलन में लोकेटेड है, उनका है जी छोले भटूरे, जबरदस्त बनाते हैं, या फिर उनका कौन सा आलू वाला कुलचा। अब आपको जीतने के लिए क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि दुनिया में बहुत सारे जूस हैं, पर एक ऐसा जूस है जिसको हम नहीं पी सकते, आप बताइए कौन सा जूस है, जो देगा सही जवाब। सिंपल सा है, हेल्दी क्वेश्चन, बट दुनिया में बहुत सारे जूस हैं, एक जूस है जो हम नहीं पी सकते, आपने मुझे बताना है वो कौन सा जूस है। 972 है जी फ़ोन का नंबर, 235 है साथ में लगता, और 55 55 चार और है, ठीक है। किनिया किनिया यार गल्ला करता है, अब रेडियो में बैठा हूँ तो गल्ला ही करूंगा, लो गल्लो बात।
6: कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का, एक दो पल का।
0: इसके पास मैं जाता हूँ बाद में, क्योंकि मेरे पास पराठा पड़ा है कल का। अभी मेरे पास कॉलर्स हैं, और कॉलर नंबर 3 जो हमेशा मेरी को सही जवाब देगा जी, उसको मैं दूंगा ये 5 तारा का गिव अवे। अब कॉलर नंबर 3 क्यों, मेरी मर्जी है, यहाँ ही चलती है घर में, तो आपको पता है। गुड इवनिंग फनेजिया, कौन बोल रहा है?
5: चलो भाई, अभिनव सक्सेना।
0: सक्सेना साहब, आपने अभिनव सक्सेना, आप हमेशा ऐसे ही बताते हो अभिनव सक्सेना।
5: सक्सेना
0: मतलब कोई आपसे पूछता है हेलो सर आपका नाम, तो आप अभिनव सक्सेना ही बताते हो कि अभिनव बताते हो? बस
5: अभिनव बताता हूँ।
0: तो आज सक्सेना क्यों आपने साथ जोड़ा?
5: मुझे लगा आज तो बहुत सारे कॉलर आ रहे होंगे आपके पास, बहुत सारे अभिनव भी आ जाएंगे।
0: एक्चुअली मैं ये नाम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये नाम ना फिल्मों में अक्सर उसका होता है जिसके पास बड़े पैसे होते हैं, अभिनव सक्सेना। तो मुझे
5: बहुत, वो हीरोइन का बाप होता है जो ब्लैंक चेक देता है।
0: हाँ हाँ, तो भैया मैं कब आऊँ ब्लैंक चेक लेने, वो बता देना। खैर अभी ये बताओ कि मेरे सवाल का जवाब, कि एक ऐसा जूस है जिसको हम नहीं पी सकते, कौन सा जूस?
5: ऐसा जूस है कंजूस।
0: ऐसा जूस है कंजूस। यार क्या बात है यार, मतलब टाइम ही नहीं दिया अभिनव, कहाँ दिल्ली से हो? दिल्ली से हो क्या?
5: हाँ दिल्ली से, आगरा से एक्चुअली, बेसिकली
0: आगरा से हो। अच्छा अच्छा, आगरा में एक और फेमस चीज है ताजमहल को छोड़ के, अभी भी है वो?
5: अब नहीं है, अब बरेली शिफ्ट हो गई है।
0: अच्छा बरेली शिफ्ट हो गई, पर कुछ लोग वहीं रह गए है ना, आगरा वाले आगरा में रह गए,
5: इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। एक्चुअली मैंने कहा था कि कॉलर नंबर 3 को दूंगा, बट आपने तो पहले पे ही चौका मार दिया, इसलिए आई विल गिव यू दिस वन। और मैं कॉलर नंबर 3 को भी देता हूँ, आप होल्ड कीजिएगा मेरे लिए। मेरे साथ और कौन है, मैं उनसे करता हूँ बात। गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस?
7: हेलो मार्विन भाई।
0: हेलो बड़े भाई, गिरीश भाई कैसे है?
7: एकदम बढ़िया, आप कैसे हो?
0: एकदम झकास। अच्छा बताओ फिर, आपको मालूम है कौन सा जूस है वो?
7: कंजूस
0: है वो, पर आप कॉलर नंबर 2 हैं बड़े भाई, इसलिए मैं आपको जाने देता हूँ। तीसरे नंबर पे एक और होंगे मेरे साथ। गुड इवनिंग फनेजिया, फटाफट अपना नाम बताइए।
8: तुषार
0: जी कैसे हैं आप?
8: बहुत बढ़िया मारून भाई।
0: चलो बढ़िया हो तो आप फटाफट से ये बताइए कि कौन सा है वो जूस, व्हाट इज दैट जूस?
8: कंजूस।
0: होल्ड द लाइन फॉर मी, कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 तारा का गिव अवे मैं जीत चुके हैं जी ये वाले भाई साहब। और मैं दे रहा हूं जी आपको एक गाना, उसके बाद लूंगा छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।
9: सारेगामा कारवां।

0: रंबा हो। इसके साथ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। पीएमजे ज्वेलर्स नाउ ओपन इन फ्रिस्को। विल टेल यू मोर अबाउट दैट आफ्टर द ब्रेक।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम केजीएमपी 104.9 एफएम HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास। साइमलकास्टिंग ऑन केटीसीजी 104.1 एफएम HD2 सैंगर टेक्सास। पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन। ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax। ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Beta, 95% aaye.
9: हाँ मम्मी।
8: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
8: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
13: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
12: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
14: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
17: Mera retirement plan ready hai.
18: Plan ya hope?
17: Matlab hai.
18: Plan matlab strategy. Hope matlab dekhte hain kya hota hai.
17: Okay, to mera wala hope hai.
18: Tabhi to log wealth tactics se baat karte hain.
17: क्यों?
18: Because retirement को hope पे नहीं, strategy पे plan करना पड़ता है।
16: Wealth Tactic, retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route, rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
10: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
9: क्यों?
10: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
9: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
19: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
20: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग फन एशिया रेडियो.

एब्सोल्युटली बिंदास बोलो जी, नाम अरविंदास बोलो, बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, 6:06 स्टूडियो की घड़ी में। आज हम अमरीश पुरी साहब को याद कर रहे थे राइट बिफोर वी वेंट टू द कमर्शियल ब्रेक, एंड सम अदर बर्थडेज दैट वी विल बी सेलिब्रेटिंग अलॉन्ग विद टॉम ऑल्टर। हमने उनकी भी बात की जो गोरा अमेरिकन, गोरा बट गोरा इंडियन, इंडियन फिल्म में टॉम ऑल्टर उनका नाम था, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे, वेरी स्किल्ड एक्टर, लॉट ऑफ मूवीज टू हिज नेम एज वेल। कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा जी दिलजीत पाजी को। दिलजीत पाजी, आपने फिर से दिल जीत लिया है जी, बिल्कुल ही बिल्कुल, क्योंकि नाउ there is a Diljit Day that is being celebrated in California, और ये I think इनके birthday वाले दिन ही इन्होंने बोला जी कि आपका जो दिन है हम रखेंगे। California वालों ने, वो कहते जी, लोग तो वैसे कहते ना दिल रखने के लिए कह रहे हैं, इन्होंने डे ही रख लिया और डे रख दिया जी इन्होंने दिलजीत साहब का ऑन हिज बर्थडे, आई थिंक वो January 5th और समथिंग, बट nonetheless यार जो भी अचीवमेंट है ज़बरदस्त है, एज अ देसी इट्स प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज यू नो देशियों का नाम रोशन हो रहा है जी, जहाँ फ्रिस्को फ्रिस्को इधर उधर बाकी कांड पटाखे बज रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा भी हो रहा है, सो बी प्राउड ऑफ दैट गुड पार्ट ऑल्सो। एंड मैं ये भी कहूँगा कि दिलजीत साहब की तो डिजर्विंग है यार, बिकॉज ही इज़ डन सो मच वर्क एंड सो मच गुड वर्क, और इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो ऑरा है, इनका जो बिहेवियर है, आई थिंक दैट विन्स पीपल्स हार्ट्स मोर। हियर वी गो विद वन ट्रैक दैट आई एम गोना प्ले फ्रॉम दिलजीत पाजी, क्योंकि दिलजीत पाजी को मिला है जी ये लॉरल, विच इज़ द दिलजीत डे इन LA कैलिफोर्निया। क्या बात है यार, कमाल। Here we go with the track celebrating Diljit Sahab's success and of course his real the most latest achievement which is this Diljit Day, और उसके साथ साथ like I said he is born to shine indeed, और खुद भी कह रहे हैं, चेक करो।

ऐसे ऐसे ही गाना लगा के अपना पति ना एक बड़ा घर में खुश हो रहा था और गाने ऐसे ऐसे लगा रखे थे उसने, तो बीवी को कहता है यार वैसे एक बात है, तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा कैसे है? तो पत्नी कहती है मैं भगवान की ना बनाई हुई बेहतरीन क्रिएशन हूँ, आई एम अ ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। पति कहता है और मैं? कहती तुम तो बस भगवान का एक छोटा सा मजाक हो। यार ऐसे कोई करता है यार? चलो मैं अपना जो टेम्पो है आज वही रखा हुआ है, मैं ओल्ड न्यू समथिंग दैट यू कैन सिंग अलोंग एज यू ड्राइव। हियर वी गो, टेकिंग यू बैक टू द 90s। इस गाने के बाद आई विल गिव यू एन अपडेट अबाउट PMJ Jewelers दैट आर नाउ ओपन इन फ्रिस्को।

लाइफ इज अ कंप्लीट सर्कल ना वैसे कि देखो बचपन में चिल्लर मांग के चिल्लर समझते ना वो नहीं मुनीशा वो जो एक्ट्रेस है चिल्लर वो नहीं यार जो चिल्लर मतलब कॉइन्स की मिलती थी ना घर से वो वाली चिल्लर यार। तो बचपन में हम चिल्लर मांग के टॉफी खाते थे हाँ जी खाते थे ना सबने खाई है मम्मी थोड़े पैसे दे दो तो वो 2 रुपये 1 रुपये 5 रुपये जो भी मिलता था तो वो चिल्लर उठा के हम लोग और कभी कभी इकट्ठे कर लेते थे 25-25 पैसे और 50-50 पैसे के सिक्के। तो हमने बचपन में चिल्लर इकट्ठी करके या चिल्लर मांग के टॉफी ज़रूर खाई है। अब ज़माना उल्टा हो गया जी लाइफ इज़ अ कम्प्लीट सर्कल अब चिल्लर ना होने की वजह से टॉफी खानी पड़ती है क्योंकि दुकानदार कहता है ये लो टॉफी ये लो 2 रुपये की जगह टॉफी। कमाल होगी ये दुनिया घूम फिर के वापस घूमती है यार। सही कहा था मेरे दादा ने लाइफ इज़ अ कंप्लीट सर्कल और आपको अब सर्कल में घूमने की जरूरत नहीं है बिकॉज द बेस्ट ज्वेलरी स्टोर इज इन टाउन दे आर नाउ ओपन इन फ्रिस्को फॉर यू जिसका नाम है जी PMJ ज्वेलर्स एंड दे आर ओपन फ्रॉम दिस लास्ट वीकेंड दिस ग्रैंड ओपनिंग करी उन्होंने एंड दिस स्टोर इज ऑल्सो प्राउडली एसोसिएट विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टना मेनेनी एंड PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाई जनरेशन। तो अगर आपने इंडिया में PMJ का स्टोर नहीं विजिट किया नाउ इज योर अपॉर्चुनिटी टू विजिट इट राइट हियर इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी एंड 60 साल का अपना एक्सपीरियंस 60 साल की एक्सेलेंस 60 साल की क्राफ्ट्समैनशिप आपके लिए लेके आए हैं चाहे स्टनिंग गोल्ड हो डायमंड हो ब्राइडल कलेक्शन हो हर इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑल ऑफ योर माइलस्टोन्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट PMJ ज्वेलर्स। तो भैया देर किस बात की ले जाइए बीवी को वहाँ और खुश हो जाए मतलब आप ज्यादा खुश होंगे जब बीवी खुश होगी। देखो लाइफ का एक सिंपल सा राज है हैप्पी वाइफ हैप्पी बस ठीक कह रहे हो।

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
3: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
7: मामू देखो क्या हो गया।
8: ओ क्या हो गया?
7: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
8: ओए जर्मन का कमाल है।
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
8: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
11: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
12: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
13: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

पत्नी गुस्से से कहती है पति को, मैं तलाक दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं के बाय बाय, वहीं से नोटिस भेजूंगी। पति कहता है जा यार जा, मीठी मीठी बातें करके ना मेरा मूड चेंज करने की कोशिश मत कर।

मेरे एक दोस्त ने सोचा था बड़ा आदमी बनेगा, बन गया, बड़ा ही नीचा आदमी बना भाई। गॉड की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। चलो एक और ले लो फिर बोनस में। आज एक लेडी अपने बंदे के साथ, मतलब हस्बैंड के साथ घूम रही होती है, जाती है एक जगह, वहाँ देखती है एक बंदा नाच रहा होता है, बड़े जोर शोर से नाच रहा है और झूम रहा है, मतलब लगे हुए हैं उसकी ड्रिंक श्रिंक ना। तो पत्नी अपने पति को बोलती है, लेडी के देखो वो बंदा है, ये जो शराबी है ना, ये जो नाच रहा है, मैंने उसे 10 साल पहले रिजेक्ट किया था। पति कहता है, देखो आज तक भी खुशी मना रहा है। मैं तो बिंदास हूँ जी, क्योंकि नाम मार बिंदास है, बंदा बिंदास यहाँ पे कहते हैं जी। 6:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:25 हो चुके हैं और इस बार आपने

मैं तो बिंदास हूँ जी, क्योंकि नाम मारविंदास है, बंदा बिंदास यहाँ पे कहते हैं जी। 6:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:25 हो चुके हैं, और इस बार आपने विशाल और शिखर का कॉन्सर्ट मिस नहीं करना है। 12th of July को है, कर्टिस कलवेल सेंटर में है। टिकट्स अवेलेबल एट cashpatelproductions.com, दैट्स cashpatelproductions.com। मेक श्योर टू गेट योर टिकट्स राइट अवे, बिकॉज दिस इज गोना बी अ सोल्ड आउट इवेंट। और अगर आपने अभी तक, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपने विशाल और शिखर के गाने ना सुने हो, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड अगर नहीं सुने तो मैं आपको झलकी देता हूँ, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुने। आपकी जिम की प्लेलिस्ट में, आपकी लव की प्लेलिस्ट में, आपकी दुख भरी प्लेलिस्ट में, सब जगह पे ये जरूर नजर आएंगे। ये देखो इनका काम कैसा है, कुछ झलकी देता हूँ आपको। हियर वी गो विद वन मोर ट्रैक फ्रॉम विशाल शेखर। July 12th, Curtis Culwell Center in Garland. Tickets once again available at cashpatelproductions.com.

मूड एंड अपनी जो कहते हैं ना आपकी जो आत्मा है, जब तक वो खुश नहीं होगी ना आसपास का सब चीज बिखरी रहेगी. सो मेक श्योर योर प्रायोरिटी इज टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड पार्ट ऑफ दैट इज मेकिंग योर हेल्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड विद द पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर द गुड पार्ट इज दैट दे स्पेंड 30 मिनट्स विद यू एवरी टाइम यू गो टू मीट दम बिकॉज दे वांट टू नो रियली व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू. इट्स नॉट 5-10 मिनट विजिट, इट्स 30 मिनट्स बिकॉज एट पैशन हेल्थ केयर यू आर नॉट अ पेशेंट, यू मोर लाइक अ फैमिली. For you and for your family and the health of the community, Passion Health is there for you with multiple locations, and now they are hiring. If you have doctors, if you have endocrinologists, if you have podiatricians and psychiatrists in your network, let them know that this place is hiring and this might be the next job they were looking for. That is with Passion Healthcare right here in DFW with multiple locations. Where do you send the resume? Well, that is passionhealthphysicians@gmail.com. That's passionhealthphysicians@gmail.com, or give them a text 214-454-4639, 214-454-4639, or you can always call us in the studio and we can get you that information. Taking you to the next track, jo ki bada hi zabardast gana hai ji. This one is also going to take you a little back real quick with some wonderful nostalgia.

आजकल के टीनेजर्स को परेशानी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो। हमारे को परेशानी ये थी कि भाई ये जो कैमरा है इसका लेंस गोल होता है, ये फोटो चौरस कैसे खींचता है भैया? कमाल की बात है, मतलब जो चेंज हो गया टाइम उसके साथ साथ क्या क्या चेंज हो गया ना। मुझे ऐसा लगता है अब कि वैसे मुझे इस टाइम में पैदा होना चाहिए था, आपको भी लगता है। पर खैर जहाँ है अच्छे हैं। आज एक लेजेंडरी कंट्री सिंगर का बर्थडे है, हिज नेम इज क्रिस क्रिस्टोफरसन एंड दिस इज हिज ट्रैक। वी आर रिमेम्बरिंग हिम एंड सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। हियर वी गो।

0: देखो यार पब्लिक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं बता दूँ कि ये ना कलयुग है, कलयुग। लोग तुम्हें बहुत गुमराह करेंगे ये बोल के कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, वेरी हैंडसम, पर आप लोग अपना पासपोर्ट और ड्राइवर लाइसेंस देखते रहना।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया।
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
5: Visit www.senadainc.com today.
8: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
10: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
11: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
15: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

टेकन फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा एंड मैं भी यही कहूंगा जी कि मैं वापस आऊंगा, बट उससे पहले जाने से पहले आपको ये बताऊं कि टुडे वाज द डे व्हेन अ ब्यूटीफुल मूवी रादर एन एनिमेटेड म्यूजिकल वाज रिलीज्ड इन द यूएस थिएटर्स. द ईयर वाज 1955. कौन सी थी वो, ये लो.